0: قرب.
1: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk।
3: इत्तेदाल, हुरियत और हक की आवाज़ हमेशा गालिब रही है और यही आवाज़ हमेशा गालिब रहेगी। आइए और सुनिए हक की आवाज़। मैं हूँ इमाम हाफिज़ इजाज़ मंद, सुनाऊँगा आपको प्रोग्राम आवाज़ाए हक में हक की आवाज़, हर सोमवार 11 बजे से 12 बजे तक, ओनली ऑन इंस्पायर FM 105.1।
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 3:30.
5: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
6: A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim.
7: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।

इसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके लिए पेश किया जाएगा तफहीमुल कुरान। सुनते रहिए इंस्पायर एफएम।

0: استنبول کے لبازاتن تیرے لہروں کے دوش پہ آواز کے اس خوبصورت رشتے سے منسلک ہم اور آپ رہتے ہیں اس شو میں، اس کا نام ہے بول کے لب آزاد تیرے۔ آج کا یہ افن لسنر آزاد شو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں جی۔ آج آپ کا اسپیشل کنٹریبیوشن چاہیے ہوگا ہم کو، کیونکہ ہماری آواز تھوڑی دیر میں بیٹھ جائے گی، لیکن وعدہ ہم نے کیا ہوا ہے منڈے اور وینسڈے کا، اس لیے وعدہ پورا ضرور کریں گے ہم۔ آج ہم نے سوچا اگر ریگولر ڈیز میں ہوتے، جو مہینہ پہلے کہ جو می ٹائم جو چل رہا تھا ہمارا، جس میں ہم نے یہ بات کی تھی، تین مہینے کا می ٹائم جو ہے، بلکہ چار مہینے کا ہمارا، اس کا پارٹ ٹو جن لوگوں کو چاہیے وہ ضرور جی۔ اگلا شو جو ہے ہمارا می ٹائم وینسڈے کو جو انشاءاللہ شو ہوگا، وہ ہوگا می ٹائم کا پارٹ ٹو، اور بہت سارے کویشچنز ہیں اس سے ریلیٹڈ، کچھ چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں آسانی سے، کچھ چیزیں ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہیں، وہ ساری باتیں کریں گے آپ کے ساتھ اور بہت سارا انجوائے بھی کریں گے۔ تو آج کا یہ شو ہم نے آپ کے لیے کیا ہے تاکہ ہماری طبیعت بھی ٹھیک ہو، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہو۔ نیا نیا موسم اور ٹھنڈ جو ہے وہ لگتی ہے، گرم سرد ہو جاتے ہیں، سرد گرم ہو جائیں، گرم سرد ہو جائیں، عجیب بات ہے نا، ایک ہی فروٹ ہے، گرمیوں میں آتا ہے اس کو گرما کہتے ہیں، سردیوں میں آتا ہے اس کو سردا کہتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح ہم بھی گرمیوں سردیوں میں آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، گپ لگاتے ہیں۔ نمبر اسٹوڈیو کا 9725019390، اور واٹس ایپ نمبر ہے تمام دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہنے والے لوگوں کے لیے 9727413883۔ اور آج کا تھینکس گیونگ کا ماحول ختم ہو چکا ہے، اس لیے لوگ چھٹیوں سے واپس آ چکے ہیں، اور آج ہم امید کرتے ہیں کہ شو جو ہے وہ ہمارا جیسے روٹین میں لوگ پیار محبت کرنے والے مہربان آتے ہیں اور اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں شو میں، تو آج تمام لوگ آئیں گے۔ سو چلیے دیکھتے ہیں جی پہلا کالر کون ہے آج کا ریڈیو آزادی رون دیئر۔
1: السلام علیکم آزاد جی۔
0: وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ لگتا ہے ٹرکی کھا کے اور سوپ شوپ پی کے فٹ ہوئی ہوئی آپ۔
1: بس جی ہاں بالکل، ٹرکی کی تو بڑی مزے کی ہوتی ہے واقعی میں، اور اسپیشلی مجھے صرف ایک ٹرکی پسند ہے آزادی، وہ ہے جیمیز کی۔
0: جیمیز
1: اور میں جی، مجھے اتنے سالوں یہاں پر میں رہی ہوں یو ایس میں، لیکن مجھے کبھی بھی آنیسٹلی میں نے ٹرکی نہیں کھائی تھی جب تک میں ڈیلس میں نہیں آئی تھی، اور میں نے بلال بھائی کے ہاتھ کی، کیونکہ وہ اتنی جوسی، اتنے مزے کے اس میں مسالے ڈالتے ہیں نا، تو واحد وہ ٹرکی ہے جو میں کھاتی ہوں، ورنہ مجھے اس کے ساتھ جو پورے لوازمات جو ہوتے ہیں، ساسز وغیرہ، مجھے نہیں سمجھ آ
0: رہا۔ ٹرکی ویسے بڑی خشک ہو جاتی ہے، لیکن جب تک آپ اس کو مکھن کے پھینٹے نہ لگائیں نا، اس کو مکھن کے ڈوبے لگانے پڑتے ہیں اس کے اوپر رکھنے کے لیے، جب تک وہ نہ لگائیں چیزیں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں، اس لیے مکھن بہت ضروری ہے اس طرح کی چیزوں کو پکانے کے لیے۔
1: جی بالکل صحیح بات ہے، اور آپ کا لاسٹ جو شو تھا بڑا مزے کا تھا، اور وہ جو آپ نے بات کی تھی چائے والی بات، تو بہت ہی مزے کی۔
0: کون سی بات، ہم تو موقع پہ کر کے نکل لیتے ہیں، کون سی بات تھی؟
1: آپ نے، آپ بتا رہے تھے کہ میں کہاں کہاں چائے آپ بھول گئے تھے رکھ کے، تو آپ نے کہا ہو سکتا ہے میں نے مائکرو ویو میں چھوڑ دیا، ہو سکتا ہے یہاں رکھی اور آپ کو پھر
0: الماری سے نکلی۔
1: جی
0: ہاں جی، تو میں نے کہا میں تو چلو پھر خوش قسمت ہوں، میں نے چائے کی پیالی رکھی تھی جو نکل آئی، آپ لوگ تو رشتے وہاں رکھ کے، صحت وہاں رکھ کے، رب کے ساتھ رشتے الماری میں رکھ کے بھولے ہوئے ہیں۔
1: وہی تو آپ نے پھر ہماری جو ہے نا، ہم ہنس رہے تھے، تو آپ نے کہا ایٹ لیسٹ چائے رکھی ہے، رشتے ایسے نہیں رکھے، واقعی ہمارے تو حال ہی برا ہے۔
0: ہمیں کئی لوگوں نے نا دماغ کو بھی وہاں رکھا ہوا ہے کہ اس کو استعمال کریں گے تو یہ خراب ہو جائے گا کہیں، حالانکہ یہ پیراشوٹ کی طرح ہے، کھولیں گے تو کام کرے گا، تو ہم میں سے کئی لوگوں نے برین بھی اپنے الماری میں رکھے ہوئے ہیں کہ اس کو کیا ضرورت ہے استعمال کرنے کی۔
1: صحیح بات ہے، اور آج آپ کا جو منٹ آف دا ڈے تھا بہت خوبصورت تھا، علم کی قیمت اور کمالات۔ اچھا مجھے یہ بتائیں آزاد جی کہ یہ جو آپ لکھتے ہیں، جیسے ڈفرینٹ ڈفرینٹ جو کیپشننگ جو آپ کرتے ہیں، یہ کون کرتا ہے؟
0: یہ بھی ہم نے کرنے ہوتے ہیں، اور کون کرتا ہے؟ اس وقت جب سنتے ہیں آدمی نا، پہلا کلپ پورا سنتے ہیں دو منٹ کا، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا، اور اگر اس میں یہ کمپلیٹ ہے کہ نہیں، اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ تشنگی رہ جائے گی یا کوئی بندے کا کوئی اینگل رہ گیا ہے، تو یہ جو اصل مہربانی اور کمال اس بندے کا ہے ہمارے جو یہ شوز سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کے کلپس بناتے ہیں، محنت ساری ان کی ہے، پھر جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کی نوک پلک ہلکی پھلکی سنوارنی ہوتی ہے، تو جو کہ بہت ہی کم ہوتا ہے، زیادہ تر ان کو جتنی سمجھ آتی ہے وہی بڑا ہوتا ہے وہ کلپ، کبھی مجھے بڑا چھوٹا کرنا ہو تو اور بات ہے، اور اس کے بعد نام، اور نام اس کا پھر وہیں پہ آتا ہے۔
1: آزاد جی اتنے یونیک، اتنے ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا، اور ہر آپ کا جو منٹ آف دا ڈے ہوتا ہے اس کا بالکل مطلب واقعی بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، اور اس میں جو آپ نے بات کی ہے نا علم کی، کہ مطلب ہمارے لوگوں کے لیے جو کہ بلیسڈ ہیں، ان کو سمجھ آ گئی ہے، وہ ویژنری ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، تو अगर मतलब ये मुझे आपसे पूछना है कि ये जो चीज होती है, ये हमारे अगर फर्ज करें कोई करीबी है तो हम किस तरह से उसको हैंडल करें अगर उसके पास इल्म नहीं है, और अगर एक इल्म वाला बंदा साथ है तो ये उसके लिए ब्लेसिंग है या ये और ज्यादा उसके लिए परेशानी की बात है?
0: असल में ये तो डिपेंड करता है ना वो बंदा क्या है। अगर वो जहालत की ज़िंदगी को अपनाता है और जहालत की ज़िंदगी जीना चाहता है तो उसके लिए तो अकल वाला बंदा तो मौत है, वो हर बात में उसको निगेशन होगी। तो इसीलिए जब हम रिश्तों में जब रिश्ते बनाने लगते हैं तो आपको ये देखना होता है कि आप किस पैथ के ऊपर हैं। आप जिस रास्ते पे होते हैं उसी रास्ते की बस लेते हैं, उसी रास्ते की ट्रेन लेते हैं, उसी रास्ते का जहाज़ लेते हैं ना। तो अगर आप किसी और रास्ते की बस ट्रेन और जहाज़ लेंगे तो कितना तंग होंगे आप, न मंजिल पे पहुंच पाएंगे, ख्वारी भी होगी, रास्ते में एग्जॉस्शन भी होगी, रिसोर्सेज भी हो सकता है कम हो जाए, परेशानी, जहनी खलफिशार, ये जितना इस स्ट्रगल में होता है उतना ही रिश्ते में भी होता है इंसानों को। तो दूसरा बंदा इल्म चाहता है, इल्म की रोशनी में रहना चाहता है कि नहीं, उसकी चॉइस है ये कि नहीं, और चॉइस है तो उसके लिए कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। जब वो एक्शंस लेंगे तो उनकी ज़िंदगी आसूदा सुकून में रहेगी और मामलात भी ठीक रहेंगे। लेकिन अगर वो गलत चॉइस कर लेते हैं, ज़िंदगी उनकी जहालत का जो पेश खेमा है, यानी कि वो जो भी चीज़ें वो करते हैं और जो वो करना चाहते हैं वो सिर्फ जज्बात घुसेड़ के, जज्बाती बातें करके और इमोशनल किस्म का ड्रामा करना चाहते हैं, तो फिर तो जाहिर बात है इल्म व फजल वाले लोग और इल्म व हिकमत वाला बंदा या बंदी उनके लिए तकलीफ़ का सामान है। तो इसलिए पहले ये फिगर आउट करना चाहिए कि हम हैं कौन, हम करना क्या चाहते हैं। लोगों को बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये इल्म जो है ये इस तरह फलां करने से हासिल हो जाएगा, फलां करने से हासिल हो जाएगा, किताबें पढ़ने से हासिल हो जाएगा। इसके लिए ये एक्वायर्ड टेस्ट है, जैसे खुशी का लिखा था ना मैंने आज, इट्स एन एक्वायर्ड टेस्ट। इसको टेस्ट शुरू में हो सकता है आपको ये पसंद ना आए ट्रूथ के बारे में, लेकिन फिर जब आप इसका टेस्ट एक्वायर कर लेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी। तो बिल्कुल इसी तरह ये हर एक के लिए नहीं होता। जैसे मुझे मैथ्स और बहुत मेरा ब्रेन जिस तरह का बना हुआ, मैं जितना मर्जी जोर लगा लेता बचपन में और अब भी कि मुझे मैथ्स और उस किस्म की चीज़ें नहीं है, मैट्रिक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है और ये फलां क्या है, मुझे नहीं समझ आती थी, पहले भी नहीं आती थी, अब भी नहीं आती। तो मैं जोर लगा कर कहूँ कि नहीं मैं सीख जाऊँगा, मैं समझ जाऊँगा और इसमें मैं PhD करके झंडे गाड़ दूँगा, ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें आपके जहन के लिए, आपकी बिसात के लिए, आपकी सोच के लिए होती नहीं। हर बंदा एक तरह का नहीं रब ने पैदा किया, मुख्तलिफ़ चैलेंजेस होते हैं, मुख्तलिफ गिफ्ट का सेट होता है और मुख्तलिफ चैलेंजेस होते हैं, और ये इसलिए किए गए हैं कि लोग कम्यूनिटी की सूरत में एक दूसरे के साथ चल सकें। तो किसी को क्या गिफ्ट मिला है, किसी को क्या गिफ्ट मिला हुआ है, किसी को इन दोनों गिफ्ट्स को जोड़ने का गिफ्ट मिला हुआ है। तो हर बंदा अपने आप को पहचानेगा, अपने गिफ्ट को पहचानेगा, उसके हिसाब से ज़िंदगी जीने की कोशिश करेगा। किसी से इम्प्रेस होकर आप आलिम से इम्प्रेस होकर आप आलिम या उसका इल्म आपको नहीं मिल जाएगा। आप बेसिकली आपने जो 20-30-40 साल जो आपका जहन जिस तरह का बन गया है या बन रहा था और आप उसी तरह सोचते हैं और समझते हैं चीज़ों को, कई लोग सारी ज़िंदगी गुजर जाती है वो सब्जेक्टिव चीज़ों से बाहर ही नहीं निकलते, कभी ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते। कई लोगों की पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है वो सोचते रहते हैं, परेशान, उनको सोचने का मतलब है परेशान होना, थक जाते हैं, दर्द सर में होने शुरू हो जाता है, हर चीज़ को आधे में छोड़ देते हैं। कई लोग जो हैं उसको इन्जॉय करते हैं तमाम चीज़ों को। तो ब्रेन किस तरह का बना हुआ है, आप उससे क्या लेना चाहते हैं और किसी के पास क्या है जिससे मिलकर हो सकता है आप उनसे ले लें। कई चीज़ें मैंने अपने लिए ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उस काम के एक्सपर्ट्स होते हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे लोग हैं, उसकी सर्विसेज मिलती हैं, आप वो ले लेते हैं और फिर अपने गिफ्ट में ज़्यादा टाइम लगा के तो फिर आप उसको दुआ अच्छा करते हैं। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, वन साइज़ फिट्स ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन नहीं होती इल्म के साथ।
1: तो मतलब ये कि हमें हमारे ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि हम कितना उसमें पार्ट प्ले कर रहे हैं, राइट?
0: जरूर,
1: सोचने में और खुश रहने में।
0: या फिर हमारा जहन किस किस्म का है, हमारा कई लोगों का जहन बड़ा सिंपल तरीके से ऑपरेट करता है और वो बहुत निचले लेवल पे चीज़ें करके कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ों की वो वैल्यू नहीं होती। हर बंदे का दिमाग इस तरह का नहीं होता कि वो चीज़ों को फिगर आउट करने बैठे। डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स, जैसे मैंने कहा ना, डिफरेंट किस्म के ब्रेन्स होते हैं लोगों के पास और उसके हिसाब से चीज़ें, आप अगर उस ब्रेन के ख़िलाफ़ कोई चीज़ चाहते हैं और शिद्दत से चाहना शुरू हो जाएं तो फिर तो ये तकलीफ़ बढ़ती चली जाएगी क्योंकि वो चीज़ आपको उस तरह नहीं मिल सकती। तो इसमें से बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, लोग हैं हमारे साथ और स्टूडियो का नंबर 9725019390। लगता है जी लोग थैंक्स गिविंग मना के आ गए हैं और व्हाट्सएप पर एक मेहरबान है हमारे साथ बड़ी दूर से, किसी और कॉन्टिनेंट से शायद। वीडियो आज़ाद यूर ऑन दियर।
2: जी सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी।
0: सर जी की हाल चाल, ठीक हो?
2: सर जी बिल्कुल बढ़िया। सर जी आज मूड लाइट है, मैंने आपको पहले मैसेज भी किया था लाइक आई विल जॉइन द शो इन द सेकंड हाफ बट देन आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ एंड देन आई लर्न लाइक इट्स माई इम्पल्स.
0: ठीक है,
2: अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैं बड़ा काम था, अभी बात करते करते मेरा दिल इतना धड़क रहा है लाइक इट आई फील लाइक आई जस्ट रैन अ मैराथन.
0: नो ब्रो, ये जब जब ना आपके दिल में बहुत कुछ होता है, ये पता है क्यों होता है, ये फीलिंग बंदे को तब आती है जब आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आपको एक धड़का सा लगा होता है कि पता नहीं वो मैं वैसे बात कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या वो बात उस तरह समझी जाएगी या नहीं समझी जाएगी, या मैं समझा भी पाऊंगा या नहीं. तो इसके लिए हीरा सिंह जी, आपके लिए भी और दूसरे ये सोचते हैं ना आप इस तरह, ठीक है,
2: बिल्कुल 100%.
0: हाँ, ऐसे नहीं सोचना, इसको सोचना ऐसे है कि मैं, मेरे पास जो है, मैं जाऊंगा ऑन एयर अगली दफ़ा. इस जहन को ये रखिएगा, ये जो जितना दिल धड़कना है या जो मसला है ना, ये सारा ख़त्म हो जाएगा. फ़ोन पे बात करते हुए आपका दिल नहीं धड़कता, ठीक. ये जो फीलिंग है ना कि और भी लोग सुन रहे हैं और भी मामलात हैं, उसकी वजह से दिल में ये रेसिंग किस्म की सिचुएशन हो जाती है. आपने सिर्फ ये सोचना है, एक कॉन्ट्रीब्यूशन करने की एक जगह है, उनको मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, मैं जो हूँ जो दे सकता हूँ और जैसा भी हूँ, मैं ऑन एयर जाऊँगा, मैं उनसे बात करूँगा, उनको जो बात चाहिए होगी वो ले लेंगे, या वो मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करके वो अपने काम की बात मुझसे निकलवा लेंगे, ये उनका काम है. मेरा काम है हाजिरी देना, ठीक है. बस आप जब इसको इस तरह सोचेंगे ना, तो फिर रेसिंग करना या वो जो ना थोड़ा सा ओवर चीज़ का हो जाना या घबराहट हो जाना, और उसमें फिर आदमी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं कर सकता, आप आउट ऑफ सिंक और आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं. मसला ये है कि हम तब क्यों आउट ऑफ सिंक और आउट ऑफ बैलेंस होते हैं, जब इमोशन टकरा जाते हैं लॉजिक के साथ. तो आपने जब बात करनी होती है तो सिर्फ सोचा करें कि हमने एक चीज़ को फिगर आउट करने के लिए बैठे हैं, उस चीज़ को जब फिगर आउट कर लिया जाएगा तो उसके बाद उसमें इमोशन डालना, उसमें पैशन डालना और बाकी चीज़ें हम डालेंगे. लेकिन जब हम उसके बारे में बात करेंगे तो उसको बड़ा सिंपल तरीके से खोल कर समझने की कोशिश करेंगे, और एक दूसरे से जो भी आप बात करोगे ना, कोई भी बंदा कोई भी बात करेगा शो में, या आपसे मैं कह रहा हूँ और आपके तवस्सुत से, आपके ज़रिए से मैं बाकी लोगों को भी कह रहा हूँ कि आपने सिंपल कंट्रीब्यूशन देने आना है. मुझे जितना चाहिए होगा, जैसे चाहिए होगा, जिस तरफ मुझको लेके जाना है, वो मेरा काम है. आपका काम है बस ढीला छोड़ दें, आप डॉक्टर साहब के पास आए हैं.
2: जी सर,
0: ठीक, इतना समझ गए.
2: आइंदा
0: इसको, इसी बात को जहन में बिल्कुल ऐसे रख के आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर फ़ोन के अपने कॉल आपने जब करनी है तो आपने कहना है, लंबा सा एक सांस पहले लेना है आपने, ठीक है, पूरा एक लंबा सांस लेना है, एक दो तीन, ताकि वो बिल्कुल जो यू नो आप काम डाउन होकर रिलैक्स हो जाएं. फिर जब आप ऑन एयर आएंगे, फिर मैं जब आपसे बात करूँगा, तो उसके बाद हम फिर ढीला छोड़कर एक क्वेश्चन होगा आपके जहन में या एक एंगल होगा जिसको आप लेके आएंगे. जब बहुत सारे एंगल जहन में होते हैं ना, तो फिर भी ये हो जाता है कि पहले कौन सा बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना. तो हर रोज़ अपने जहन में सिर्फ एक सोच, एक मसला या एक एंगल लेके आपने ऑन एयर आना है. बाकी मैं बातों बातों में एंगल भी निकाल लूँगा और मसले भी हम मैं खुद ही निकाल लूँगा. ठीक हो गया? Would that help?
2: Definitely. It makes sense. And again, it's like lots to observe, lots to absorb. और मेरा जैसे आपने अभी कहा, mind वैसे ही काम करता है. There are too many things. और इतनी entangled हो चुकी हैं. I'm trying to put them one by one. But like you know, जो पिछले दहाकों की जो सोच का जो pattern बन चुका है, उसे तोड़ने में अभी आई एम फेसिंग फ्यू प्रॉब्लम्स.
0: ओके, एक प्रॉब्लम क्यों की हो रही है फिरज जी? तड़े नाल भी ते बाकी भी साडे जे बहुत सारे मेहरबान ने नाल प्रॉब्लम की हो रही है. उन्हें पता नहीं, पर उन्हें जल्दी बड़ी है टू फिक्स द प्रॉब्लम. आपने हमेशा याद रखना है, जो प्रॉब्लम 25-30 साल में बनी है ना, वो एकदम या एक झटके में कुब्बे नु लत रास आ गई वाला काम नहीं हो सकता. क्योंकि वो कभी कभी होता है, और वो एक आध चीज़ होती है, उसके बाद पूरी थेरेपी होती है जहन के ऊपर, जो आप खुद आपने करनी है अपने जहन के ऊपर. जो काम 30-25 साल में ख़राब हुआ है, उसको कम से कम 25-30 महीने सोचें आप, ठीक है, कि 25-30 महीने तो कम से कम देना एक चीज़ को, जिसमें 30 साल को ब्रेन वेव से लेके न्यूरो पैथवे से लेके सॉफ्ट एंड हार्ड इंडॉक्ट्रिनेशन से लेके सोचने का एक तरीका बन गया है, सर्टन चीज़ों का रिएक्शन आपके माइंड में बन चुका है पहले से। अब इन तमाम चीज़ों को चेंज करना है तो इसमें आपने बिल्कुल इसको बच्चों की तरह इसके साथ मोल्ड करना है, आहिस्ता आहिस्ता, कभी इसको खिला के, कभी इससे प्यार करके, कभी लाड करके, कभी मुस्कुरा के, जोर नहीं लगाना है। जोर लगाएंगे तो फिर मसले ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि एक आदमी है जो 25-30 साल का एक बन चुका है। अब उस आदमी ने अपने जहन को उस तरह बदलना है कि ज़िंदगी उसके कंट्रोल में रहे, उसका बैलेंस और उसके इमोशंस भी उसके काबू में रहें, और वो रिज़ल्ट जो चाहता है अपनी ज़िंदगी से, जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो हासिल कर सके। तो अपने आप के साथ अब बिल्कुल इस तरह डील करना होगा जैसे आप किसी बच्चे के साथ डील करते हैं, और जल्दी नहीं करनी है। कोई जो बंदे मेरे से ज़िंदगी में नहीं कुछ रिजल्ट, सिर्फ उस बंदे का आया जिसको जल्दी बढ़ी है, रिश्ते बनाने की जल्दी, इंप्रेशन देने की जल्दी, कुछ चाहने की जल्दी, कुछ पाने की जल्दी, कोई जल्दी नहीं है। ये एक अपने साथ एक किया हुआ वादा है। ये जितने लोग हम प्रेयर्स करते हैं, जितने लोग हम अपने पैसे कमाते हैं, जितने लोग हम रिश्ते बनाते हैं, जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, ये सारे का सारा आउटकम है उसका। जब तक बेसिक ब्रेन के अंदर सिस्टम ठीक नहीं होगा, हमारे सारे बनाए हुए पैसे ज़ाया हो जाएंगे, हमारे सारे इमोशंस और रिश्ते जो हैं वो सब ज़ाया हो जाते हैं। मेरे सामने सब के हो रहे हैं, कोई भी बड़े से बड़े किया हुआ काम ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि उसकी आपकी ज़ात के ऊपर मैनिफेस्टेशन नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी अचीवमेंट, कोई भी ऐसा लॉरल्स आप अचीव कर लें जिसका आपकी ज़ात और आपकी ऑथेंटिसिटी पर असर नहीं पड़ रहा, वो ज़ाया है। एक दिन वो आपको याद ही नहीं होता। जब आप परेशान होते हैं आपको याद ही नहीं होता मैंने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, मैं कितना बड़ा, मेरी सोच है, मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, मैंने क्या किया, बिकॉज आपने उस तरह ज़िंदगी में सोच कर हमने ज़िंदगी जी ही नहीं। तो जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने किया अपनी ज़िंदगी में, कि एक जगह पर रुक के पीछे आप एनालाइज करते हैं क्या क्या गड़बड़ हो गई है, अब इस गड़बड़ को कैसे कैसे इसको ठीक करना है, और आगे अवेयरनेस के साथ, मसला है अवेयर होने का। जो हमने जो भी ज़िंदगी में अब तक किया है, बचपन में, जवानी में, लोगों की देखा देखी किया, वो सारी कंडीशनिंग थी, उसमें हमने कोई कमाल किया ही नहीं। जो कुछ भी हम चाहते हैं वो हम इसलिए चाहते हैं, जो सक्सेस के स्टैंडर्ड्स हमने बनाए हैं वो सब इसलिए बनाए हैं कि दूसरे हमको ऐसे देखना चाहते हैं, हमें भी लगता है कि शायद ये करने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो नहीं ठीक होंगी। बिकॉज हर आदमी डिफरेंट है, उसके ब्रेन के केमिकल्स डिफरेंट है, उसके जीन्स डिफरेंट है, उसके चैलेंजेस डिफरेंट हैं। तो एक तरह की ज़िंदगी जो इन्होंने बना के हमें दे दी है कि जी इसके हिसाब से हो, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। खुद को देख कर, सोच कर, समझ कर, अपनी स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को, अपॉर्चुनिटीज़ को, थ्रेट्स को सामने रख कर, फिर आप एक ज़िंदगी बनाएंगे जो आप बनाएंगे। और उस ज़िंदगी में, क्योंकि ये ज़िंदगी और इसकी जो पूरी गेम है ये सारी आपने खुद बनाई है, फिर ना आप इसमें, आपको कोई टेंशन होगी, ना स्ट्रेस होगा, ना जज्बात इस तरह आएंगे कि हम बात ही ना कर पाएँ और परेशान हो जाएँ और गुस्से भी में हम फटेंगे भी नहीं, क्योंकि ये वाली ज़िंदगी की गेम आपने खुद बनाई होगी अपने आप को सामने रख के। तो उसके बाद ये सारे मसाइल जो पिछली गेम हमने 30-35-40 साल खेली है वो गेम हमारे लिए थी नहीं। तो अब आप बिल्कुल एक नई गेम बनाने लगे हैं जो आपकी ज़िंदगी की है, जो आप जिसके स्टैंडर्ड सेट करेंगे, इसमें क्या किसी को मिलना है, क्या नहीं मिलना, आपको क्या मिलना है, आपको क्या नहीं मिलना, जब ये सारे रूल्स ऑफ द गेम ही आपके होंगे तो उसमें तो आप नहीं हार सकते। समझ आइए बात। जब तक ये नहीं बनाएंगे, और हर आदमी को रब ने ये अलाउड किया हुआ है कि वो अपनी मर्जी की चॉइसेस करे, उसको फ्री विल दी हुई है, लेकिन इससे पहले उसने सोचना है, समझना है, बाकी लोगों को पीछे हटकर, प्रेशर से हटके, अकेले में ज़्यादा टाइम स्पेंड करके, अपने आप को फिगर आउट करके, जब आप ये वाली गेम बनाएंगे जो आपने डिज़ाइन की है, तो इस गेम में आपको हराना या मारना या परेशान करना या तकलीफ देना नामुमकिन हो जाएगा लोगों के लिए। इतनी सी काम की बात समझें आप।
2: हाँ जी सर।
0: इस आप बताएं, ये जो मैंने बात की इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं और क्या फीलिंग आई है, इससे क्या होगा? अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताएं।
2: सर, इससे रिलेटेड दिमाग में अभी जो बात आ रही है कि मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा सेल्फिश फील हो रहा है, लाइक आई एम पुटिंग आउट माई प्रॉब्लम ऑन समवन एंड दे आर गिविंग मी आंसर्स। आई अंडरस्टैंड वी इससे कई लोगों का फायदा हो जाएगा बिकॉज दे आर सेइंग द सेम वे, बट मेरा जो एज वी स्पोक अबाउट मेंटल कंडीशनिंग फॉर इयर्स, वो जो हो चुकी है, आस्किंग फॉर हेल्प इज हैज बीन द बिगेस्ट प्रॉब्लम, एंड आई हैव लर्नड एंड ऑब्जर्व्ड मायसेल्फ दैट विदाउट आस्किंग आई वोंट बी एबल टू थ्राइव, आई विल बी इन द सेम सिचुएशन ऑल ओवर अगेन, एंड आई हैव टू सबमिट I have to submit that I cannot do it myself. It's okay asking for help. But ये जो struggle जो अभी चल रहा है, अभी पिछले कई सालों से चल रहा है, to ask for help and then जो अंदर वाला जो दूसरी feeling है कि जो जो हमें सिखाया गया है या तुम मर्द है, तुम खुद नहीं कर सकता, इतनी सी बात नहीं खुद figure की।
0: अच्छा, जिसने ना जिसने हमको ये बात बताई थी ना, तू मर्द है तू नहीं कर सकता, वो they died miserably, ठीक है, उनके दादे परदादे everyone was miserable। पहली बात तो ये समझें, आप अपने अबावा अजदाद में से किसी की ज़िंदगी भी नहीं लेना चाहेंगे, वो बड़ी टफ ज़िंदगी थी और इस ज़माने में वो वैसे ही फिट नहीं आती, ठीक है। आपने सिंपल थोड़ा सा सोचने का तरीका, मैं आपको एंगल बताता हूँ जिस एंगल के ऊपर आपने सोचना शुरू करना है, फिर ये मसला ही नहीं रहेगा। पहली बात, यू आर नॉट कमिंग अप हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म आस्किंग फॉर हेल्प। यही तो गड़बड़ है जो हम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ। यू आर नॉट आस्किंग फॉर हेल्प, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन अ वे। आप एक तरीके से एक चीज़ को बयान कर रहे हो जो कि 99% लोगों में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि उसके बारे में बात करें, पहली बात। दूसरी बात, हर बंदा, हर आपका जो मसला है ना, जो भी मसला आपका या किसी का भी है, वही मसाइल हैं, वही 10-15 मसाइल हैं पूरी इंसानियत के साथ, करोड़ों देशियों के साथ वही मसले हैं, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता और उसके बारे में कोई डिस्कशंस नहीं कर रहा। जब तक आप डिस्कस नहीं, आप पॉइंट लाते हो, आपको आगे से एक पॉइंट मिलता है, उस पॉइंट को बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से बयान करते हैं, तो आप बेसिकली हेल्प कर रहे हैं उन लोगों की जो वो सामने नहीं ला रहे, वो आप सामने ले आए। आप नहीं भी बताएंगे तो मैं तो फिर भी सामने ले ही आऊँगा, ठीक, लेकिन हर बात मेरे सामने लाने से और किसी और बंदे के सामने लाने से मुख्तलिफ़ लोगों को चीज़ें मुख्तलिफ़ तरीके से हिट करती हैं। तो एक्चुअल में यू आर नॉट सीकिंग एनी हेल्प। आप क्या कर रहे हैं, आप किसी एक चीज़ के बारे में आकर फोरम पे बात करते हैं कि ऐसे फील होता है, और जो आपको होता है ना वैसे 99% लोगों को होता है, लेकिन वो इस तरह कह नहीं पाते, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। तो पहली बात है, आप इसको कॉन्ट्रीब्यूशन में डालें बजाय हेल्प के। जब कॉन्ट्रीब्यूशन में आप कोई चीज़ डालते हैं ना, तो आपको उसके बदले कुछ मिलता है, ये तो पता है ना आपको। आप ज़कात देते हैं, आपको एक अच्छी फीलिंग आती है, ठीक। आप अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस को कॉन्ट्रीब्यूशन के तौर पर डालते हैं, ये तो वो वाली बात है कि मैंने 40 साल की ज़िंदगी में जो कुछ सीखा, मैंने सब कुछ इस शो में बोल दिया, बता दिया आपके ख्याल से, ठीक है, तो उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है, आप बताएं मुझे क्या। आप फ़र्ज़ करें, आप आज़ाद जी हैं इस वक्त, मेरा वाला काम आप करते हैं, मैं एग्जैक्टली वही कर रहा हूँ जो आप आके इस शो पर कर रहे हैं, मैं ये काम 18 साल से कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे बताएं, आप जो सुनते हैं, आपको क्या लगता है मैं कौन हूँ और मुझे क्या मिल रहा है ये करने से, और लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं समझते हैं, जो भी क्या इमेज है आपके दिमाग में कि मुझे क्या मिला उससे।
2: सर, मुझे नहीं लगता आप लोगों की बिल्कुल भी परवाह करते हैं लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि यही काम तो हम सब करना चाहते हैं। और आपको जो सुकून मिलता है ना, अंदर से सुकून मिलता है, उसी के पीछे मुझे बाकियों का नहीं पता, मैं भी भाग रहा हूं। मुझे लगता है आपको अंदर ये सब करके अंदरूनी सुकून बहुत मिलता है। आपको, आप जब अपने आप को शीशे में देखते हो, आप यू डोंट थिंक दैट दिस क्या चल क्या रहा है, आप कहते हैं कि दिमाग, यू कैन फिगर थिंग्स आउट, यू फील गुड अबाउट एवरीथिंग।
0: अब आपने समझ नहीं, आप जो आप देखे, मैं आपसे भी जो आपको लगता है ना कि आपको वीक थे या आपको लगता है कि आपको चीज हैंडल नहीं कर पाए, मैं अपनी ज़िंदगी में जितने लोगों को आज तक मिला हूँ, मैं बचपन में उन तमाम लोगों से ज़्यादा वीक आदमी था, तमाम लोगों से ज़्यादा वीक था, मेंटली वीक था, फिजिकली वीक था, स्पिरिचुअली वीक था, मैं बहुत वीक आदमी था, बेइंतहा वीक।
3: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं, जो है रेडियो आज़ाद। तो हम याद रखिएगा, ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।
4: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.

0: कम्युनिटी की आवाज है, बस एक ही आवाज है। आप समात फरमा रहे हैं इंस्पायर एफएम 105.1।
1: Grayson Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Grayson Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Grayson Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
2: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
3: The intercession of the one who has been given the ultimate intercession of the human beings, and that is our Habib and Mustafa, the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. The shafa'ah of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. We cannot know if we're going to get it, but our dua is, O Allah, make me amongst those whom the Prophet ﷺ makes shafa'ah for. That shafa'ah, whoever gets it, is going to Jannah. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us that shafa'ah. And after the adhan, what dua do we make? Allahumma rabba hadihi da'wati tamma wa salati al-qa'ima. Aati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmoodan alladhi wa'adta. The maqam al-mahmood is the maqam of shafa'ah. And our Prophet ﷺ said, whoever makes this dua sincerely from the heart, then I shall be his shafi' on the Day of Judgment. So that is why we make dua to Allah, that, O Allah, make us of those whom the shafa'ah of the Prophet ﷺ reaches.
4: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqah fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
5: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
6: Just because you've left your car, it doesn't mean you have to switch off. Keep listening to Inspire FM online or click on your smart TV. Either way, you can stay connected to Luton's best radio station all day and all night.
5: This is Inspire FM.
7: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
8: बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना. और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए. हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं. मैं हूँ आज़ाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे. ओनली ऑन इंस्पायर FM.
9: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
10: फौज में जब तक गया मैं, तब भी काफ़ी वीक था मैं. जब सीनियर में जो भी मैं चीज़ें अचीव करता था, उसके बावजूद मैं बहुत वीक आदमी था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली मैं वीक था. इन्वायरमेंटली जो चीज़ें मुझको असर कर रही थी, और जिस सोसाइटी में बड़ा हो रहा था, जिस घर में मैं बड़ा हो रहा था, वो हर चीज़ उन पूरा माशरा एक तरफ सोच रहा था और मैं एक और तरफ सोच रहा था, जिसकी वजह से मैं डर गया, घबरा गया. और मुझे लगता था कि मैं कैसे सही हो सकता हूँ, ये सब के सब कैसे गलत हो सकते हैं. 100-100 साल की इनकी जिंदगियाँ हैं, बट दे आर लिविंग अ मिजरेबल लाइफ. इनके फाइनेंसेस बेहतर नहीं हो रहे, इनकी इमोशनल लाइफ बेहतर नहीं हो रही, इनकी शादियां मतलब कुत खाने खुले हुए हैं, इनके बच्चे इनके काबू में नहीं है, जिंदगी गोलियां मर रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, जहालत की ये सारी फजूल की ज़िंदगी चीज़ें जी रहे हैं। तो उसने मुझे क्या किया, अपने अंदर बंद कर दिया और उस घुटन में मेरी स्टैमरिंग भी शुरू हो गई, मेरी हर चीज़ मुझे बीमार रहना शुरू हो गया, मैं फिज़िकली मेंटली हर चीज़ के साथ साथ, तो मैं बहुत वीक हो गया। तो आपने ये बात समझनी है कि फिर मैंने जब दुनिया के साथ चलने की कोशिश, क्योंकि मैं वीक था तो मैंने कहा यार ये तो खा जाएंगे हमको, तो मैंने कहा चलो इनके साथ चलते हैं, ये हो सकता है सही कह रहे हो। अंदर से हालांकि बड़ी आवाज़ आती थी कि नहीं ये सब गलत है, ये कोई ठीक नहीं हो रहा, लेकिन मैंने फिर भी 28-30 साल तक मैंने लोगों के तरीके से करने की कोशिश की, जो घर में सीखा समझा था वो करने की कोशिश की, जो इर्द गिर्द सोसाइटी में चल रहा था वो करने की कोशिश की, मैं जिस इंस्टीट्यूशन में जिस मैंने बिजनेस में गया जॉब में गया मैं उसमें करने की मैंने कोशिश की। बट एट द एंड ऑफ द डे आई रियलाइज टू थिंग्स, वन दे वर ऑल रॉन्ग एंड सेकेंडली आई वॉज मिजरेबल, एंड आई वॉज मिजरेबल टू एन एक्सटेंट वेयर मैं इनकपैसिटेटिंग हद तक ख़राब हो गया कि मेरे से काम ही कुछ नहीं होता था, ना मैं सोच पाता था, ना मैं कुछ कर पाता था, अपेरेंटली हर चीज़ मेरी परफेक्ट थी, लोग मुझे मेरी तरह बनना चाहते थे और मेरी मिसालें देते थे और वो बस कहते थे कि वह बंदा ऐसा होना चाहिए, लेकिन खुद बंदा अंदर से वीक खोखला हो गया हॉलो। तो फिर मुझे किताब पढ़ने से एक रात को जब मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू, तो मैंने जिस दिन कुरान पहली दफ़ा खोला और उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता समझने लगा पढ़ने लगा, तो मैंने रब की जब बातें सुनी एग्जैक्ट वो किताब में क्या कहता है, और फिर मैंने दुनिया की जो 30 साल की ज़िंदगी मैंने गुजारी थी जब मैंने उसको देखा, तो वो मुझे लगा कि दोनों के आपके बीच में टोटली कोई भी एक कंट्रास्ट था, बिल्कुल कोई भी चीज़ आपस में नहीं मिलती थी, जो भी रब कह रहा था हमारी सारी सोसाइटी पूरा घर पूरी फैमिली सब कुछ हम उसके खिलाफ थे। तो जब मुझे समझ आई कि ये और जो ये 30 साल में जिन्होंने मुझे किया, उन्होंने मुझे एक वीक जहनी तौर पे कमज़ोर और हर किस्म का जो कि उसके नुकसान होते थे मुझे वो आदमी बना दिया, और जब मैं दूसरी साइड पे लेके चला उन चीज़ों को, तो अगर मैं शुरू में तो मैं स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि मैं देख रहा था बहुत सारे लोग आपसे दूर हो जाते हैं, इसकी बड़ी इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है हर चीज़ की, जैसे आज का क्लिप भी था एनलाइटनमेंट की या इल्म की कीमत अदा करनी पड़ती है, लेकिन मैं वो कीमत 100 दफ़ा देने को तैयार हूँ, मुझे एक और ज़िंदगी भी मिलती है तो मैं डायरेक्ट उसी ज़िंदगी में वही करने की

0: मुझे मोहब्बतें इसने मिली, फिर मैंने उनको वो बताया कि जो उनको भी मिले, तो मुझे लोगों की बेइंतहा परवाह है, इतनी ज़्यादा कि मुझे, मैं शायद, मैं अगर अपने लिए कोई चीज़ ख़रीदना चाहता हूँ ना, मैंने आज तक कभी बारगेनिंग नहीं की, लेकिन मैं जब किसी के साथ जाता हूँ, मैं उसको बेस्ट डील दिलाने की कोशिश करता हूँ। मैं जब भी मेरे इर्द गिर्द कोई लोग होते हैं ना, वो खुश रहें, वो सुकून में रहें, उनको जो चाहिए वो मिल जाए, मुझे अपनी बिल्कुल परवाह नहीं होती। तो और मैंने ज़िंदगी में जो किया, मैं आर्मी में गया किसी की वजह से गया, मैंने फिल्म की मैंने किसी की वजह से की, मैंने आर्मी छोड़ी किसी की वजह से छोड़ी, मैंने ट्रैवल किया, जहाँ जहाँ मैं ज़िंदगी में काम करता हूँ, मैंने सब किसी के लिए किया। मैं अभी फिल्म जो करता हूँ वो भी मैंने किसी के लिए, मैं खुद के लिए, मुझसे कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं खुद के लिए कुछ करना ही नहीं चाहता, मैं सुकून करना चाहता हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। लेकिन ये सब ज़िंदगी में दूसरों के लिए करने का मतलब ये है कि मेरे लिए लोग बेइंतहा इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जब उनको पता ही नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, तो क्या मैं उनकी परवाह करूं? मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि उनको क्या गलत और सही लग रहा है, मैं इस बात की परवाह करने लगा हूं कि क्या सही है और उनके लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या सही है और हम दोनों के रिश्ते के लिए क्या सही है। जब ये पता लग जाता है तो फिर लोगों की रोंती बूथियाँ, और उनको नहीं पता, एक आदमी गलत चीज़ खाना चाहता है, गलत काम करना चाहता है, उस रास्ते में वो मारा जाएगा, ज़हनी तौर पे बर्बाद हो जाएगा, तो मैं उसके वो चीज़ करने के बजाय उससे वो काम करता कराता और उसको सीधा रखता हूँ कि वो कर ले जिसमें उसकी भलाई है, और अगर वो एक हद तक नहीं रुकता तो फिर वो अपना कर ले जो उसने करना है, और फिर उसकी जो भी कीमत और सज़ा है वो उसको उठानी पड़ेगी, मुझे नहीं। तो जब आप ये जान जाएंगे, तो ये जिस तरह मैंने पूरा पर्सपेक्टिव आपको समझाया, इस एंगल से आपने सोचने की कोशिश की?
1: सर मेरा कहने का मकसद मतलब यही था, जब मैंने कहा कि आप लोगों की परवाह नहीं करते, परवाह मुझे भी फैमिली की ऐसे ही है जैसे आपको है, परवाह मुझे भी जो मेरे आसपास ऐसे ही है, बट कितना बंदा समझाए जो आपने कहा सही और गलत। अभी अभी मैंने यही करना शुरू किया है कि मैं जानता हूँ ये सही है, मैं इसको कर दूंगा, और इसके बाद इन्होंने लेना है तो ये ले लेंगे, अगर नहीं लेना है तो ये नहीं लेंगे,
0: बस हक है उनका ही।
1: हाँ जी,
0: और क्योंकि अभी आपने इनसे बाहर, उनकी जिंदगी आपकी जिंदगी नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग ना वो ओवर रिस्पॉन्सिबल होने की कोशिश करते हैं और इसमें मारे जाते हैं और अपने लिए दुख और तकलीफ बना लेते हैं। किसी भी आदमी को जो जिम्मेदार है, जो बेहतरी करना और जानना चाहता है, मैं सख्त खिलाफ हूँ उस आदमी को टॉर्चर करने की। कोई भी करता है मैं उसको कभी नहीं माफ़ करता। कि एक आदमी आपके लिए अच्छा सोचता है, आप उसको तकलीफ़ देते हैं, एक आदमी आपको थोड़ा सा देता है और आप उसे और मांगने की कोशिश करते हैं, एक आदमी आपके साथ नाइस होता है, काइंड होता है, आपकी हेल्प करने की कोशिश करता है, आप उससे उसके साथ चिपक जाते हैं लीच की तरह। मुझे ऐसे किसी बंदे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हर बंदा अपनी अपनी ज़िंदगी जिएगा, वो जहाँ फंसेगा, जहाँ उसको मसला तकलीफ होगी, वो मुझसे या मुझे किसी को मैं जानता हूँ तो उसको मैं रेफ़र करूँगा, उसको ठीक करेंगे, और उसके बाद वो जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मेरे साथ कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ इट इज़। If they are not contributing to what I am trying to do for them and for myself and for others, I don't need them or I limit my interaction with them. And you know, और जो भी reciprocal जो चीज़ें मुझे उनसे करनी है, मैं उसके हिसाब से नहीं करूँगा। जिसका जितना contribution है, चाहे वो मेरा blood relation है, चाहे वो मेरे friends हैं, चाहे मेरे partners हैं, चाहे कोई भी बंदा है, अगर वो मेरे constitution के ही खिलाफ है तो मैं उसके साथ नहीं चल सकूँगा लंबा। थोड़ा थोड़ा चल सकता हूँ, ज़्यादा नहीं चल सकता, इतनी सी बात है। चाहे वो जो मर्ज़ी डीलें लेके आ जाएं, कुछ भी वो कहें, चाहे सोसाइटी कुछ कहती है, चाहे लॉ कुछ कहता है, जो भी होता है लॉ पे, मैं लोगों के साथ काम करता हूँ, वो लॉ वगैरह का जब कुछ मुझे कहते हैं कि जी हम लॉ के थ्रू ये करेंगे, मैं कहूँगा सारा कुछ सारा आप ही ले लो, ले जाओ सारा कुछ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लॉ से खेलता रहूँ मैं। समझ, आप लॉ के पास किस लिए जाते हैं? कि जो आपको इंसाफ से फैसला करें ना कि आधा आधा कर देंगे या 20-25 कर देंगे या ये बात ऐसे हुई थी। मैं कहता हूँ नहीं, इतना टाइम ही नहीं है, ये पकड़ो और निकलो सारे का सारा लेके। आई डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स। मुझको क्वालिटी की ज़िंदगी जी कर कुछ चीज़ों को फिगर आउट करना है और कोई चीज़ क्रिएट करनी है। अगर मेरे रिश्ते कमाल नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए। अगर मेरे रिश्ते, मैं जो सोचता हूँ, जो मेरी ज़िंदगी रब ने मुझे दी है, उस मेहरबानी मेरे पर इतनी की है कि मैं इसको कमाल का एक नमूना बना सकता हूँ, तो मैं क्यों ना बनाऊँ? तो अगर आप इनसिक्योरिटीज़, कॉम्प्लेक्सेस और दुनिया के डर से वो मेरे साथ एक चीज़ रखना चाहते हैं, मुझे वो खेल नहीं खेलना, क्योंकि बहुत खेल लिया और बहुत लोगों ने खेल लिया ये खेल, ये रिज़ल्ट हमको नहीं चाहिए। इससे अच्छा हम एक्सरसाइज कर लें, इससे अच्छा मूवी देख लूँ मैं, उससे अच्छा मैं लोगों से प्यार मोहब्बत की बात करके या यू नो शो कर लूँ मैं, ये ज़्यादा वैल्यूएबल है बजाय इसके कि जो भी वो कहते हैं। तो ये इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इन चीज़ों के साथ कंफर्टेबल करना होगा और बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा जो कि आपके लिए इख्तियार में आपके नहीं है। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं लोग, उनकी फ्री विल। आपको कंफर्टेबल होना है इसके साथ कि भाई मैं जितना कर सकता था मैंने किया, आई हैव टू लेट गो एंड देन डोंट। अब थोड़े से अपने आप को स्पेस दें, और क्योंकि आप अपने सामने होता हुआ देखेंगे तो वो बार बार ट्रिगर करेगा आपको। तो लेट देम बी, लेट देम लर्न देयर ओन लेसन, और उसके बाद अगर आपके पास आते हैं और ठीक होने को

0: کوشش کرتے ہیں تو آپ وہیں سے شروع کر لیں.
1: جی سر, اسی باتوں سے نا ایک میرے دماغ میں ابھی جو چل رہا تھا, جو where I have problem letting it go, اور اس کے اوپر میں ابھی کام کر رہا ہوں. ایک سمپل چیز تھی, جیسے جو میری انڈسٹری ہے, the way I work, we help people, you know, roads are assist, سال میں ہم ایک بار سارے ٹرکس کی چیکنگ کرتے ہیں. سو وی نیڈیڈ اے ڈرائیور لائک یو نو ٹو گو ان دیئر, دین وی پٹ دی ٹرک آن دی ہوئسٹ سو اٹ گوز اپ. تو ایک اس نے مجھ سے پوچھا, کین آئی گو؟ آئی سیڈ نو, وی نیڈ یو ہیئر بیکاز دس از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو. از لائک وہ بندہ تھوڑا جس ٹائپ کی مینٹیلٹی سے مجھے پرابلم ہے, اس لیے میں بتا رہا ہوں جو مجھے ہٹ کرتی ہے. اس کا بھائی آپ نہیں جا سکتے, آپ کو کیا ویزا لگتا ہے؟ اینڈ آئی ڈنٹ ہیو این آنسر فار دیٹ مومنٹ. اور مجھے یہ بات پتا نہیں کیوں میرے ذہن سے جا نہیں رہی, لائک دس از دا پروسیجر, دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو. یہ سارے بندے ایسے کرتے ہیں, لیکن یہ بندے کسی چیز کو سمجھنے کی بجائے لائک دے ہیو آنسر فار ایوری تھنگ, اینڈ دے موسٹ پیپل ایون انکلوڈنگ فیملی دے سے سم تھنگ لائک دیٹ وداؤٹ ایون انڈرسٹینڈنگ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. اور مجھے اس بات سے ریئلائزیشن ہوئی, وین آئی ایم ناٹ ایبل ٹو فنش واٹ آئی ہیو ٹو سے اٹ بودرز می فار دیز.
0: اچھا ہیرا سنگھ, مجھے ایک بات بتائیں, دو چیزیں اس میں شو آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, دو تین پوائنٹس یہاں پہ آتے ہیں. پہلی بات مجھے سچ سچ ایک کلیئر بات بتائیں, فرض کر آپ کے پاس پیٹس ہیں؟
1: نہیں سر.
0: کبھی پیٹ رکھا ہے؟
1: چھوٹے ہوتے گھر میں تھا, ابھی نہیں.
0: اچھا, ابھی میری غور سے بات سنیے گا اور اس کو پریکٹیکلی جیسے میں بول رہا ہوں اس کو ویسے ہی سوچیں آپ, جیسا میں بول رہا ہوں ویسے ہی سوچیں. فرض کریں آپ نے بلی رکھی ہوتی, اس کو آپ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, اس کے ساتھ آپ لاڈ کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, وہ بلی کوئی ایسی حرکت کرتی جو آپ کو بہت بری لگتی, ٹھیک؟ اب آپ دوسری طرف انسان کے ساتھ آ جائیں, آپ اس کو خیال رکھتے ہیں, کیئر کرتے ہیں اس کو, جتنے طریقے سے جو آپ سمجھ ہے اس کے حساب سے اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, پھر وہ انسان آپ کو کچھ ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جو آپ کو لگ جاتی ہے, چپ جاتی ہے, یا کوئی ایسی حرکت کر دیتا ہے جو آپ کو بہت بری لگی ہے, آپ کیا بلی کے ساتھ بھی وہی ریئیکشن دیں گے جو آپ کسی بندے کے ساتھ دے رہے ہیں؟
1: Obviously not, sir.
0: تو اس میں آپ نے, میں پہلے دن سے جب سے آپ شو سن رہے ہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, ہم میں سے بہت سارے انسان کیا ہیں, حیوانی حالت
1: حیوانی حالت میں.
0: جب ایک آدمی حیوانی حالت میں ہوتا ہے, بلی آپ کو کیسے دیکھ رہی ہے یا کیسے رسپونڈ کر رہی ہے, کیا آپ کو ریئیکشن دینا چاہیے اس کا؟ نہیں,
1: بالکل.
0: تو یہ جو انسان بھی اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ ابرپٹلی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں, یا دے ہیو این آنسر فار ایوری تھنگ, اور اس کو غلط بھی ہوتے ہیں تو نہیں مانتے, آپ نے یہ ان کے ساتھ سمپتھی ہوتی ہے کہ یہ بھی حیوانی حالت میں. ایک بات, دوسری بات ہے پٹھانوں میں اور سکھوں میں, یہ میں کلیئر بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو, کیونکہ جس طرح کلچر ہوتا ہے, جس طرح ہمیں بڑا کیا جاتا ہے اور جس طرح کا رکھ رکھاؤ اور فیملی اور چیزیں ہوتی ہیں, ہم لوگوں کو کچھ چیزیں بہت بری لگ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, رسپیکٹ کا ایشو ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو کسی اس قسم کا کوئی بھی جملہ کوئی بولے کہ بھائی تمہیں اس کا ویزا لگتا ہے, تو یہ اس نے صرف اپنے طریقے سے ایک جواب دیا ہے. لوگوں کو باتیں بڑی کرنی آتی ہیں تو اس کو وہ ایک بندہ ہے جو باتونی ہے, اس نے ایک بات دی کی ہے. لیکن ہم اور آپ اسپیشلی, یہ دو میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ یہ ان کی ٹریننگ کا, اس کا خون کی وجہ سے نہیں کہہ رہا میں, ٹریننگ اس طرح کی جاتی ہے کہ ہمارے لیے یہ بدتمیزی ہے کہ نہیں؟
1: بالکل.
0: بدتمیزی جب آپ, جیسے ہی اس کو آپ بدتمیزی کے کمپارٹمنٹ میں ڈالتے ہیں, تو سردار جی کا جو دماغ ہے نا وہ بدتمیزی کا ریئیکشن دیتا ہے, کلیئر؟ تو اس کمپارٹمنٹ میں ڈالنے کے بجائے اس کو جہالت کے کمپارٹمنٹ میں ڈالنا ہے, اس کو جانور والے کمپارٹمنٹ میں ڈالنا ہے کہ ہی ڈز ناٹ, جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا فگیو دیم دو دے نو ناٹ, ان کو معاف کریں کیونکہ یہ نہیں جانتے. تو وہ لوگ جو نہیں جانتے, جو کہ آپ کے سمجھانے بتانے کی, آئی بیکم مور نائسر ٹو دیز پیپل جب میں کسی کے ساتھ کام کرتا ہوں, یا میں اور جو بہت قریب ہیں ان کے لیے میں سخت ہو جاتا ہوں ان باتوں پہ, اگر وہ ایسی کوئی بونگیاں ماریں آگے سے فضول بات کوئی کریں, اس پہ میں سختی کرتا ہوں کیونکہ وہ بہت قریبی لوگ ہیں اور وہ پورا سسٹم سنبھالتے ہیں, بزنسز سنبھالتے ہیں, یا رشتے سنبھالتے ہیں, ان کو آپ, یو کانٹ افورڈ ڈم پیپل اراؤنڈ یو. لیکن جو باقی لوگ ہیں جو سیکنڈ تھرڈ ٹیئر پہ ہوتے ہیں, ایسے کسی بھی بندے کی بات کو سیریس نہیں لینا, بلکہ اور نائس ہو کے آپ نے صرف ان کو ایک لک کرانی ہے اور ان کو تھوڑا سا فرم ہو کے وہ بات دوبارہ ایکسپلین کرنی ہے, اور اس میں کبھی آپ ہلکا سا لائٹ جینٹل طریقہ بھی ڈال سکتے ہیں اور کبھی فرم طریقہ بھی ڈال سکتے ہیں. تو اس کو اس طریقے سے لیں گے تو یہ جو اوور سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں نا, کئی چیزیں اس طرح کہی نہیں جاتی. جب فوج میں ہم ہوتے تھے, کوئی آفیسر کو الٹی سیدھی بات کر دیتا تھا, سینئر کو بہت بری لگ جاتی تھی, تو پھر جو درمیان میں سینئر ہوتا تھا نا, وہ جا کے اس سینئر سے کہتا تھا سر معاف کر دیں, اچھا افسر ہے, بس انگریزی کی غلطی ہو جاتی ہے اس, یعنی انگلش میں اس نے جس طرح کہا ہے اٹ جسٹ کیم آؤٹ यू नो इन अ बैड वे में निकल आई ये बात, वरना ही डिडंट मीन दैट। सो इंग्लिश की गलती, मैं उसको कहते सर अंग्रेज़ी की गलती होगी, बेवकूफ़ को नहीं पता था, छोड़ दे माफ़ कर दे। तो बिल्कुल इसी तरह आपने भी बीच में उनको थोड़ा सा लोगों को लेवरेज देना है, और उस तरह उनको लीवे देंगे तो ज़िंदगी आसान होगी। वरना अब आपने कहा ना कि मैं इस चीज़ से, मैं मेरा दिमाग से चीज़ निकल नहीं रही है, ये ज़िंदगी की इतनी ज़बरदस्त जो ज़िंदगी मिली हुई है, जो फैमिली मिली हुई है, जो सोचें मिली हुई हैं, जिस मुल्क में आप रहते हो उधर जो आपके यू नो माहौल मिला हुआ है, इस जिसके ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए लोग तरस जाते हैं, फैमिली के लिए लोग तरस जाते हैं, इज़्ज़त प्यार मोहब्बत के लिए लोग तरस जाते हैं, आपको वो सब मिला हुआ है, उसके सदके इन छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करना है आपने। और ये कोई भी चीज़ें नहीं, आपको इसको बहुत लाइट लेना होगा, वरना आपकी पार्टी जो चल रही है ज़िंदगी में और बहुत बेहतर आगे आप कर सकते हैं उसके ऊपर असर आएगा। क्लियर
1: सर? यही मेरा, मेरे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है ना, ये मैं कौन सी बातों पे ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि दैट्स हाउ आई वाज बिफोर। और अभी अभी जैसे जैसे ये सब आपके आपके शो के थ्रू और कुछ अदर थिंग्स आई हैव कम अक्रॉस, आई एम ट्राइंग टू एनलाइटन माइसेल्फ मोर दैट दीज आर द थिंग्स, दे आर जस्ट होल्डिंग मी, दे आर दिस एंकर्स, आई एम ट्राइंग टू लेट देम गो, एंड एज यू सेड बिफोर लाइक यू नो आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट देयर बिकॉज दिस इज व्हाट The problem I'm facing,
0: आप मुझे ये बताएं,
1: and I need it.
0: हाँ, इस सारी बात में पहले तो enlightenment में एक बात, आप enlightened हों पहले, वो enlightened ये भी जितनी आपने मुझे दो मुख्तलिफ सिचुएशन और प्रॉब्लम्स बताई हैं, इसमें कहाँ आपने हेल्प कहाँ सीख की है मेरी? आपने मुझे एक सिचुएशन बताई है और मैंने आपको बताया ब्रेन ऐसे काम करता है, सोसाइटी ऐसे काम करती है, कंडीशनिंग ऐसे काम करती है, और उसके बाद ये चीज़ इस तरह इसको फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे तो इसमें बेहतर होगा। इसमें हेल्प कहाँ आपने सीख की, जो आप अक्सर कहते रहते हैं कि मुझे ऐसा फील होता है, ये भी हमारी कंडीशनिंग है, पठान होने की वजह से, सिख होने की वजह से, मर्द होने की वजह से, कि भाई मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द कभी रोता नहीं है, मर्द किसी के पास हेल्प के लिए नहीं जा सकता, और मर्द बेचारा इतना ही मासूम है जितनी औरतें हैं। ब्रेन जो होता है ना, उसको नहीं पता आप मर्द हैं या औरत हैं, ये लोगों ने कंडीशन हमको कर दिया है, तो इस कंडीशनिंग से हमने बाहर निकलना है। कोई किसी की मदद नहीं कर रहा, ना किसी को किसी की मदद की ज़रूरत है, हम लोग सिर्फ चीज़ों को डिस्कस करके, ये जो भी आपने कहा ना होल्डिंग ऑन टू स्मॉल लिटल थिंग्स एंड दे कीप ऑन बॉदरिंग यू एंड यू मिस द बिगर पिक्चर, ये आपका नहीं, मेरा, हज़ारों का, हर बंदे का जो इसको सुनेगा किसी भी जगह पर, सबका ये मसला है। तो आप सिर्फ उसको हाईलाइट करते हैं, मैं भी अपनी चीज़ों को हाईलाइट करता हूँ, मुझे जो लोग मिलते हैं मैं उनकी चीज़ों को भी हाईलाइट करता हूँ, कुछ चीज़ें आप अपनी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। सो वी जस्ट हम प्रॉब्लम को हाईलाइट करके उसके इर्द गिर्द एक सिचुएशन को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, और एक्चुअल में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसा ही निकलेगा, और आखिर में अगर आप इनको कंपार्टमेंटलाइज करके आहिस्ता आहिस्ता, कुल 10 से 15 सेकेंड होते हैं जो रिएक्शन जिसमें हमारा निकलता है, वो 15 सेकेंड मुंह बंद रखना है, वो 15 सेकेंड मुंह नहीं बंद रख सकते तो वहाँ से निकल जाना है, वो कुछ और करने की कोशिश करनी है, जस्ट ये इंस्टिंक्टिव जो एकदम रिएक्शन हम देने की कोशिश करते हैं, इससे बचना है आपको। मैं खुद बचने की कोशिश करता हूँ, लोगों से अवॉइड करता हूँ, फोन कॉल से अवॉइड करता हूँ, वो ब्लड रिलेशन से अवॉइड करता हूँ, जब तक मैं उस मूड में और सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं इस किस्म की स्टुपिडिटी ले सकूँ और लाइट रख सकूँ चीज़ों को। तो मेरा भी यही स्ट्रगल है जो आपकी स्ट्रगल है, तो कोई ना मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ना मैं आपको कोई ऐसा कोई एहसान कर रहा हूँ, तो आप इन बातों से बाहर निकलेंगे, आप आते जाते रहेंगे इस तरह और गप लगाते रहेंगे, तो मैं यकीन से जो आपका काम सालों में होना है ना, वो मंथ्स में निकल आएगा, और आप उस आराम से फिर आप सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन पर ध्यान देंगे।
1: देखिए अभी आपने ये बात मुझे 15 मिनट पहले भी बोली थी, लेकिन अगेन वही मेंटल कंडीशनिंग की बात आ गई। आई विल डेफिनेटली कीपिंग ट्राई टू keep tweaking my mind that I'm not seeking help, we are just discussing. तो ये बात मुझे अपनी बार बार करनी, बस अभी मुझे ये समझ में आ गया, ये बदर
0: करेगी ना, मुझे जो चीज़ बदर करती है मैं उसको लिख लेता हूँ, मैं कहता हूँ कॉन्टेंट है सीधा सीधा। आप जब कोई चीज़ बॉदर करती है तो आपको लगता है ये कोई प्रॉब्लम है, अब इसका मुझे मसला हल चाहिए, अब मैं उसके साथ फलां करूँगा, ये इससे बाहर निकल कर बिल्कुल लाइट रखें खुद को। मुझे जब कोई चीज़ मेरे दिमाग में आती है जब मुझे बॉदर करती है, मैं लिख लेता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये कमाल कौन, इसके बारे में बात करेंगे, इर्द गिर्द से लोग कहते हैं अच्छा इसका ये मतलब होता है, उनको भी ऐसा ही होता है, तो चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं भी सारी अपनी ही चीज़ों के बारे में, और जो चीज़ मुझे लोग मिलते हैं उनसे जब मैं बातें करता हूँ तो पॉइंट्स बनते हैं, और उसी से शो बनता है, और उसी से ये नॉन स्टॉप हज़ारों घंटे बने। तो आपने इसको इस तरह से लेने की कोशिश करनी है, और आपको एक दिन पता ही नहीं चलेगा, आप लाइटर एज फेदर हो जाएंगे, आपको खुद ब खुद, जिस तरह मैं चीज़ें करता हूँ ना, मैं जैसे गाड़ी भी ऐसे चलाने की कोशिश करता हूँ कि मुझे ब्रेकें ना लगानी पड़े, स्पीड इतनी होनी चाहिए, राइट लेफ्ट बिल्कुल सीमलेस तरीके से ज़िंदगी जीना, सीमलेस तरीके से रिश्ते बनाना, और सीमलेस तरीके से हीलिंग करना। उसको बिग डील बना के अफरा तफरी मचाना, और अगर गलती हो गई है या वही रिएक्शन दोबारा दे दिया तो अपने आप को मारना पीटना नहीं है जहनी तौर पर या फिजिकली, या कोई चीज़ उठा कर नहीं फेंकनी है, ओहो फिर वही स्टूपिडिटी होगी, फिर वही रिएक्शन होगी। अवॉइड करना है मुझे, इस बंदे से अवॉइड करना है, सिचुएशन से अवॉइड करना है, उसको लाइट लेना शुरू करें।
1: जी सर, मैंने भी कुछ चीजें अभी जब लिखने की बात आई तो मैं जब लिखता हूँ कभी कभी मैं खुद डर जाता हूँ, क्योंकि ऑब्जर्वेशन इज सो पावरफुल, और जो मैंने चीजें कुछ ऑब्जर्व करी है, जैसे मर्द और औरत की बात कर रहे थे, मैं खुद की एग्जाम्पल ही दे सकता हूँ। देन अगेन कुछ दिन पहले हमारा बच्चा ही वॉज आउटसाइड इन द वॉकर, वो भाग रहा था, तो मैंने एक बार दिमाग में बात भी आई लाइक आई शुड पुट सैंडल्स ऑन हिम, बट फिर मैं भूल गया। तो वो भागते भागते उसके नाखून से खून बहने लगा, और फिर जो मैंने अपने आप को पीटा है अंदर से,
0: यही तो मैं कह रहा हूँ ना, क्यों पीटा, देखो ये टू हार्ड, मैं कब से आपको, कितने सालों से मैं आपको एक ही बात कह रहा हूँ, एंड यू नॉट वर्किंग ऑन इट, यू आर बीइंग टू हार्ड ऑन योरसेल्फ, थिंग्स हैपन, नेक्स्ट टाइम आपको ये सोचना है उसके बजाय, ओहो यार मुझे उस वक्त कर देना चाहिए था, इससे ज्यादा रिएक्शन नहीं देना, और अगली दफा जब ये करेगा और तो उसको आपने जो भी सैंडल्स जो भी आप कह रहे हो पहना देने, खत्म, इससे ज्यादा नहीं सोचना आपने, और ये अपने आप को बीट अप करना, आप उस बंदे को मार रहे हो जिसने जिंदगी में कोई काम करना है, उस जहन को मार रहे हो जिसने आगे कोई कुछ सोचने आया है, कोई फिगर आउट करना है, जो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, जो परेशानियों से निकलना चाहता है, जो मोर रिस्पॉन्सिबल आदमी है, जो बाकी लोगों को भी सीधे रास्ते पर लेके जाना चाहता है, वो अगर अपने आप को ही मारता पीटता रहेगा तो उसने आगे काम खोते तो सिर करना है।
1: वही बात, जब मैं अपने आप को मार पीट रहा था तभी मैं अपनी वाइफ को भी ऑब्जर्व कर रहा था, और मैंने उसको देखा, शी सिटिंग देयर काम एंड कलेक्टिवली, वो उसको भी देख रही है, और मुझे हीरा इट्स ओके, वो मुझे बोल हीरा इट्स ओके, रिलैक्स,
0: ये कई मेरे दोस्त भी है ना, कई दोस्त हैं, मेरा एक दोस्त है उसके साथ में कि वॉक कभी हम कर रहे होते हैं तो कुत्ता कहीं से आता है वो छलांग मार देता है उसको, मैं कहता हूं भाई, और वो कहता है नहीं नहीं मैं कंफर्टेबल हूं, कंफर्टेबल कहां हूं, छलांग मार के पैर मेरा कुचल रहे तुम तो वो, और ये कहते मानते भी नहीं होते ऐसे लोग, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू काम योर नर्व्स डाउन, इट्स नॉट अ बिग डील, अनलेस कोई इतना बड़ा कोई काम हो जाए जो रिवर्सिबल नहीं है, और वो हो जाएगा, क्योंकि अगर आप हर वक्त हाई अलर्ट पे रहते हो, हर छोटी चीज़ बिग डील होती है, तो आपके जो पार्टनर्स होते हैं ना, फैमिली के भी लोग पार्टनर्स होते हैं, बिजनेस में भी पार्टनर्स होते हैं, जिंदगी में होते हैं, वो उनको ना, वो भी बेचारे हाई अलर्ट पे रहते हैं, और वो हर वक्त आपकी परेशानी लेके बैठे रहते हैं, हालांकि आप वो बनना चाहते हो कि जो दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले।
1: Exactly.
0: तो ये तो उल्टा चल रहा है ना साइकिल,
1: बिल्कुल उल्टा चल रहा है, और इस बात का दुख बार बार अंदर अंदर खाए जाता है,
0: और दुख नहीं, यही तो मैं आपसे कहता हूं कि दुख नहीं करना है, उसको फिगर आउट करना है, उसको दुख नहीं लगाना, दुख ये लगा ओहो फिर वही स्टुपिडिटी, फिर वही बेवकूफी, चलो दोबारा से करते हैं।
1: हाँ जी, अभी मैंने दोबारा फिर करना ये शुरू किया है, लाइक अभी वी आर जस्ट डिस्कसिंग व्हाट आई वेंट थ्रू, और जो स्पेशली व्हाट आई फील इन द मोमेंट, क्योंकि अगेन जस्ट लाइक लास्ट टाइम आई सेड व्हेन यू सिटिंग कॉमली कलेक्टिवली यू नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग व्हाट आई शुड डू, हाउ आई एम सपोज्ड टू डू।
0: आपने एक बात याद रखनी है, मैं अभी काम की बात मुझे ज़हन में आ गई है, आप जिंदगी में कभी भी मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं बना सकोगे, ना किसी मर्द से, ना औरत से, ना बच्चे से, अगर आपका बिहेवियर बाइपोलर टाइप है, एक आप बहुत अच्छे आदमी है, मज़े के आदमी है, कंफर्टेबल, और एकदम आप अप हो जाते हैं, एकदम अप और एकदम डाउन होना जो है ना, ये हमेशा ज़िंदगी में लोगों को आपसे रिश्ते बनाने से दूर रखेगा, आपके ट्रस्ट के ऊपर शक रहेगा, और आप बाकी चीज़ों पर रहेगा कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता आप एक चीज़ के बारे में 10 दफ़ा 20 दफ़ा बताते हैं, फिर आप गुस्सा कर रहे हैं या कुछ एक्टिव यू नो हाइपर एक्टिव हो रहे हैं तो वो और बात होती है, लेकिन अगर आप फौरन बगैर किसी रीज़न के, बगैर किसी लॉजिक के एकदम बहुत बड़ा इशू बना दोगे और एकदम उसको नीचे लेके जाओगे तो लोग आपके इर्द-गिर्द अनकंफर्टेबल और घबराए हुए रहेंगे, और इस तरह वो कभी आपको कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर पाएंगे, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने एक्शंस को बिल्कुल ऐसे रफ अराउंड द एजेस हो रहा है काम, इसको स्मूथ करना है ताकि आप लोगों से टकराएं तो उनको कॉर्नर आपके कोने ना लगें, आपको रफ अराउंड दिया जाए बिल्कुल आपको, और मीनिंगफुल इतनी आप मेहनत करते हैं, इतने जज्बों से, प्यार से, इज्जत से, मोहब्बत से आप लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन जब आप रिएक्ट करते हैं तो वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती
1: हैं। वही है सर, रिएक्शन के टाइम पे वो सारी चीजें ऐसे उड़ जाती हैं जैसे वो स्टीम की तरह, भी कभी थी ही नहीं वहां पे।
0: बिल्कुल, तो इसका इसमें दुख नहीं लगाना है, इसमें लगाना है, इसमें आप एक चीज में फेल हुए हो बस उस पर जोर लगाना है कि यार ये क्यों मैं कर जाता हूँ, इतना काम मैंने किया था। अब देखो मैंने ना वादा किया था, मेरा ना कल तबीयत बहुत ख़राब थी, रात को मैं सोया भी नहीं, नाक बंद, सांस बंद, सब बुरे हालात थे, और अपनी मेडिसिन वगैरह भी लिया, मेरा दिमाग बिल्कुल सुबह काम नहीं कर रहा था, मैंने धूप भी लगाई, मैंने सारे काम कर लिए, चाय चाय भी पी ली, मैंने कहा किसी तरह मैं शो के काबिल हो जाऊँ। अगर मैंने मी टाइम में पिछले महीने में वादा ना किया होता मंडे के शो का, तो मैं आज स्किप कर जाता। लेकिन क्योंकि मैं कमिटमेंट कर चुका हूं, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मंडे और वेंसडे कंफर्म है। फ्राइडे अगर मुझे कभी भी चाहिए होगा अपने कामों के लिए, बिजनेस के लिए, यू नो, लिखाई पढ़ाई के लिए, तो मैं वो ले लिया करूंगा, लेकिन इसको मैं नहीं छोड़ सकता। तो मैं जब आया हूं, नहाया धोया हूं, फ्रेशन अप होकर मैंने सारे काम कर लिया, मैं आया हूं और आगे काम एक हो रहा है। तो आपने जैसे ही मार खाएंगे, कुछ भी हटेंगे, आपने दोबारा वापस जाना है, समझ रहे हो? कंसिस्टेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, कंसिस्टेंसी का। अब मैं एक्सरसाइज में कंसिस्टेंसी करने की कोशिश करता हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत डिसिप्लिन वाला हूँ और परमानेंट करता ही रहूँगा, मुझसे वो नहीं होता। लेकिन आई एम कंसिस्टेंट इन कमिंग बैक टू इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। कोई बात नहीं, लेट हो गए, चार पाँच दिन नहीं हो सकी, गड़बड़ हो गई, सेहत खराब होगी, कुछ भी, बट कम बैक टू इट। तो दो तीन हफ्ते लग गए, बट जस्ट कम बैक टू इट, कमिंग कंसिस्टेंटली, कमिंग बैक टू वट योर कमिटमेंट टू योर सेल्फ वॉज इज द थिंग विच विल गेट यू वेयर यू वॉन्ट टू गो इन लाइफ। और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोइम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं, जो है रेडियो आज़ाद। तो हम याद रखिएगा, ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।

0: Assalamu alaikum. You have been listening to the Daily Imam Booster. Stay tuned to Inspire 105.1 FM for more inspiring talks and lectures.
1: जब भी आपके दरवाजे पे कोई दस्तक हो तो छोटे बच्चों को दरवाजा खोलने से मना करें और खुद भी दरवाजा खोलने से पहले इस बात की तसल्ली कर लें कि दस्तक देने वाले से आप और आपका घर महफूज है। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
1: Inspire FM.
0: Inspire 105.1 FM.
2: आप लुटन से समात फरमा रहे हैं। Inspire FM 105.1.

0: الناس. صدق الله العظيم.
1: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express. Brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk or like Gao Express on Facebook.
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फेंस रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001234774.org.uk।
3: होशियार रहें, कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर FM और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से रब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर FM कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

सूरज की किरणों से चमके सारा जहां, इंस्पायर एफएम की लहरों से महके सारा समा। रहे आपके साथ यहां और वहां, शेयर रेडियो इंस्पायर।

0: کل کے سیشن کے آخر میں دو باتیں میرے ذہن میں تھیں جو رہ گئیں، وہ میں پہلے ذکر کر دوں. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین کے بارے میں، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے. یہ ذرا سی کمپلیکیٹڈ چیز ہے، لیکن میرے خیال سے آپ لوگ کافی اسمارٹ ہو، آپ سمجھ جاؤ گے. ٹھیک ہے، رب کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ اس میں پانچ معنی ہیں، کسی کو یاد ہے کیا تھے؟ مالک، سید، منعم، مربی، قیم. اچھا، پانچ میں سے نا اس کو ہم تھوڑی تقسیم کر دیتے ہیں. ان میں سے دو کا تعلق اتھارٹی کے ساتھ ہے، باقی تین کا تعلق رحمت کے ساتھ ہے. پانچ معنی ہیں لیکن دو کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اتھارٹی کے ساتھ، اقتدار کے ساتھ. وہ دو کون سے ہیں؟ آپ خود گیس کرو. مالک اور سعید کا تعلق اقتدار کے ساتھ ہے. لیکن جس نے خیال رکھنا ہے، جس نے تحفہ دینا ہے، جس نے نشو نما کرنی ہے، مربی، منعم، قیم، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ رحمت کے ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اوکے. اب آگے جا کر مالک کا لفظ آیا تھا، مالک یوم الدین، اور مالک کی دو قراءات تھیں، یاد ہے آپ کو؟ مالک اور ملک. اس میں سے ایک مالک تو ویسے بھی رب کے ساتھ تھا، اور ملک اتھارٹی کے یا جو سید کے قریب ہے. ملک اور سید، سمجھ رہے بات؟ یعنی رب میں پانچ معنی ہیں لیکن اس میں سے دو معنی مالک اور ملک میں بھی ہیں، لیکن تین مسنگ ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کون سے تین مسنگ ہیں جو رب میں ہیں، جو مالک میں اور ملک میں نہیں ہیں؟ منعم، مربی، قیم. تو وہ تین مسنگ کیوں ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تین مزید کیوں ہیں اور وہاں تین کم کیوں ہیں؟ وہاں بات ہو رہی ہے انصاف کی. کس دن کا مالک ہے؟ مالکی یوم الدین. یہاں بات ہو رہی ہے تمام عالمین کی، رب العالمین. وہ آخرت کی بات ہے، آخرت کے کورٹ والے دن کی بات ہے، اور یہاں پر دنیا کی بات ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کا اقتدار بھی ہے لیکن وہ ہر وقت ظاہر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی ملکیت بھی ہے، ہر وقت ظاہر نہیں کرتا. مجھے امپریشن ملتا ہے میرا بھی کوئی کنٹرول ہے، میرے منہ میں جو بات آئے میں کہہ سکتا ہوں، وہ روکتا نہیں ہے. روک سکتا ہے؟ روکتا نہیں ہے. میں جو دیکھنا چاہوں دیکھ سکتا ہوں، وہ میری آنکھوں کو بند نہیں کرتا. ہے تو وہ مالک، ہے سید، لیکن اس کو وہ ایکسرسائز کرنے سے مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ اس کو مجھے کنٹرول کر رہا ہے. اور وہ کیوں نہیں کر رہا؟ فوراً پکڑ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ منعم، مربی، قیم، الرحمن، ان ساری چیزوں کی وجہ سے مجھے تھوڑی سی آزادی دی ہوئی ہے. قیامت کے دن کیا ہونا ہے؟ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اس دن تو کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. مہطعین رؤوسهم، یہاں تک کہ مجرموں کے بارے میں، اللہ ہمیں مجرموں سے میں سے نہ بنائے. سورۃ القمر میں بتایا ہے کہ وہ ان کو پکارا جائے گا ایک ایسی چیز کی طرف جو بہت ڈرونی ہوگی. الى شيء نکر، یوم یدعو الداعی الى شيء نکر، ایسی چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے جو بہت ڈرونی ہے. اچھا، اگر میں کہیں آگ دیکھوں اور وہ قریب ہے، کوئی جانور دیکھے، کوئی انسان دیکھے، کس طرف بھاگے گا؟ اللہ کی مرضی کے خلاف قانون اور پوری پوری سوسائٹیز ہونے کے باوجود وہ ان کا مربی اور ان کا منعم اور ان کا قیم. اچھا، سوسائٹی کا جو لا ہوتا ہے نا، اس کے لیے بھی قرآن میں ایک لفظ ہے، پوری ایک جو اس کا آئین ہوتا ہے، اس کے لیے لفظ قرآن استعمال کرتا ہے دین. جیسے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھا ایک سازش کے تحت، یعنی ان پر الزام لگایا کہ کب ان کے بیگ میں سے نکلا، ان کے بستے میں سے نکلا، تو کہا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا ایسا کیوں کیا انہوں نے. اس لیے کیا، ما کان ان یاخذ اخاه فی دین الملک. ان کے لیے ممکن نہیں تھا اپنے بادشاہ کے قانون کے تحت کہ وہ ایسے ہی اپنے بھائی کو رکھ لیتے. اریسٹ کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا. تو جو بادشاہ کا قانون تھا نا، اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا سورہ یوسف میں؟ دین. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جب عالمین کی بات کی گئی ہے نا، تو تمام عالم، تمام سوسائٹیز، تمام سولیزیشنز، ان تمام کے دین الگ الگ تھے، ان کے قانون الگ الگ تھے، لیکن اللہ پھر بھی ان کا رب رہا. फिर भी उन पर निमते करता रहा। लेकिन एक दिन आ रहा है जब वो, आप किसी भी कानून से आए हो, किसी भी आइन से आए हो, एक दिन सबको एक ही कानून के तहत जज किया जाना है। वो क्या है? मालिक यौमी अद्दीन। अब सख्ती हो गई। जब सख्ती हो गई तो नरमी वाले तीन मायने निकालने पड़ेंगे। तो यहां पर रब और वहां पर मालिक की बात समझ में आ गई। तो ये चीज, ये भी बारीक सा तनासुब है कि रब के साथ अलआलमीन और मालिक के साथ यौमिद्दीन, सुभानअल्लाह। अच्छा, अब आके मैंने आखिरी बात आपसे रात की थी और कल की थी दोपहर को, कि अब इन तमाम बातों का जो अल्लाह ताला ने इन तीन आयात में कही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, अब इसका एक नतीजा निकलना चाहिए। और कुरान इस पहली सूरत में ना सिर्फ अल्लाह ताला अपना तारुफ करा रहा है, इन तीन आयात में तो अल्लाह ताला ने अपना तारुफ करा दिया, लेकिन इस पूरे कुरान का जो मकसद है ना, उससे भी हमारा तारुफ हो रहा है। कुरान की हर सूरत में बहुत ज़्यादा हिदायत हैं, लेकिन फातिहा में पूरे कुरान की हिदायत का खुलासा है। और उस खुलासे में से एक अहम बात यह है कि इंसान को खुद फैसला करना है कि वह अल्लाह ताला का बंदा बने, यानी शौरी तौर पर, और ख़ुद मुख्तार होकर खुद ये फैसला करे। उस पर यह फैसला किसी की तरफ से मुसल्लत नहीं किया जा सकता। ला इकराह फितीन, दीन के मामले में आप किसी पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, जबर नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते। आप जितना भी बच्चे को फ़र्ज़ करें तरबियत कर लो, नमाज़ पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, एक अभी उस पर नमाज वाजिब नहीं है, उसकी उम्र नहीं हुई, एक दफ़ा उसकी उम्र हो जाए और फिर वो आपके डांटने डपटने से नमाज पढ़े, तो उसकी नीयत क्या थी? नीयत करता हूँ चार रकत नमाज अम्मी की वजह से, अल्लाह अकबर, यही नीयत थी ना? हमारे दिन ने क्या सिखाया? अमाल की बुनियाद, अमाल का दारोमदार किस चीज़ पर है? अगर आप किसी को फोर्स कर रहे हो तो उसकी नीयत अल्लाह की थोड़ी रही, नीयत तो आप थे ना, नीयत तो किसी का प्रेशर था। तो शुरू से ही अल्लाह ताला ने क्या कहा है, यहाँ तक कि अल्लाह, क्योंकि वो रब है, वो फोर्स कर सकता है, वो ज़बरदस्ती भी करा सकता है। पुलिस वाला आपसे गाड़ी रोड पे ज़बरदस्ती करा सकता है, आपको कहता है कि रुक जाओ तो आपको रुकना पड़ेगा, आपको इशारा करेगा रुको गाड़ी, आपको रुकनी पड़ेगी, स्लो करने को कहेगा स्लो करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला भी इसी तरह आपको रुकवा सकता है, और अगर नहीं रुकोगे तो उसके साथ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसका कोई ना कोई नतीजा उसी वक्त आपको उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने इस निज़ाम में, इस दुनिया के निज़ाम में एक आज़ादी दी है, और उस आज़ादी से इंसान खुद अपनी आज़ादी से कहे इय्याका नअबुदु, इसीलिए कहा उबुदु नहीं कहा, उबुदु कहा होता अच्छा आप इबादत करो, वो हुक्म होता अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन हमने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इय्याका नअबुदु। अल्लाह ताला ने अब हमारे अल्फाज को कुरान का हिस्सा बना दिया, हम तेरी इबादत करते हैं। ये भी एक अजीब बात हुई, पहले अल्फाज अल्लाह ताला की तरफ से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। इस आयत में अल्लाह ताला की तरफ से आयत तो है, लेकिन अल्फाज किसके हुए? अगर हम कहें हम तेरी ही इबादत करते हैं तो किसके अल्फाज हुए? हमारे अल्फाज हुए। कुरान का एक बुनियादी मकसद क्या है? अल्लाह ताला और हमारे दरमियान एक बात हो रही है, एक मुकालमा हो रहा है, और अब हमें उस मुकालमे की शुरुआत हो गई है। अल्लाह ताला कुछ कहते हैं फिर हम कुछ कहते हैं, अल्लाह ताला कुछ कहते हैं फिर हम कुछ कहते हैं। जिस तरह आप किसी की बात सुनते हो और आप बात सुनने के बाद आपका रद्द अमल होता है ना, फिर आप उसका जवाब देते हो, आपके जहन में कोई बात आती है तो आप कहते हो, अल्लाह ताला अब हमें सिखा रहे हैं जब अल्लाह ताला कोई बात करते हैं तो आपके जहन में, आपके दिल में कोई बात आनी चाहिए और वो आपके मुँह से निकलेगी। तो जो बात नेचुरली मुँह से निकलेगी इस फातिहा के अंदर, वो क्या है? इय्याका नअबुदु। अच्छा, तो ये पहली बात तो मैंने बता दी, जिस नतीजे पर इंसान खुद पहुंचे। यहां पर भी एक और, क्योंकि मैं अपने बारे में थोड़ी सी बात आपको बताऊंगा, ज्यादा फिर बोरिंग हो जाएगी। मैं जब इस्लाम के बारे में सोच रहा था कि मैं मुसलमान क्यों हूं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो मेरे साथ थे नहीं उस वक्त न्यूयॉर्क में, कॉलेज में मैं कुछ ज्यादा ही आजादी थी, तो सोचने का मौका मिला कि अगर मुसलमान हूँ भी तो क्यों हूँ, क्या इसलिए हूँ कि मेरे पेरेंट्स वालदैन मुसलमान हैं, तो मेरा जो दोस्त हिंदू है उसके वालदैन हिंदू हैं तो उस वजह से वो हिंदू है, तो वो तो कोई ईसाई फैमिली से आया हो तो वो ईसाई होगा, कोई यहूदी हो तो वो यहूदी होगा, मेरी फैमिली मुसलमान है, पाकिस्तान से हैं तो मैं मुसलमान हूँ। इसका इस्लाम के हक होने से तो कोई ताल्लुक नहीं हुआ। फिर दूसरी बात ये कि जो अल्लाह ताला को नहीं मानते ना, एक तो है कि मुख्तलिफ खुदाओं को मानते हैं, शिर्क करते हैं, फिर एक इल्हाद है। इल्हाद क्या है कि मैं एथीस्ट हूँ, मैं किसी खुदा को नहीं मानता। जो एथीस्ट होते हैं ना उनकी एक कॉमन उनमें एक मुश्तरक सोच ये होती है कि अगर वाकई कोई खुदा होता तो इतनी नाइंसाफ़ी कैसे होती। तुम कहते हो ये खुदा बड़ी मोहब्बत करता है, उसको अर्रहमान कहते हो, तो ये जो बच्चा कैंसर की वजह से मर गया, ये जो माँ मर गई कार एक्सीडेंट में, उसका बच्चा भी रो रहा है, ये कैसा अर्रहमान है? इसको रहमत कहते हैं? इस किस्म के खुदा को मानते हो तुम? और तो एक तरफ तो वो कहते हैं कि इसके अंदर इस खुदा के अंदर रहमत नहीं है, तुम कहते हो रहमत है, मुझे तो रहमत नज़र नहीं आ रही, उसकी हज़ारों मिसालें देते हैं। उसके बाद वो एक और बात भी करते हैं, वो कहते हैं तुम कहते हो कि इस खुदा ये जो है ये अदल का मालिक है, ये अदल करता है, मुझे तो कहीं अदल नज़र नहीं आता। जो लोग बिजनेस में चीटिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं, रिश्वतें देते हैं, करप्शन करते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। जो दयादारी से काम करता है, झूठ नहीं बोलता, रिश्वत नहीं करता, मिलावट नहीं करता, वो कहा क्या होता है उसके साथ? वो पीछे रह जाता है। जो अपने PhD पेपर में कहीं और से कॉपी करके इधर उधर से करके सबमिट कर देता है, उसको पेपर मिल जाता है, उसको डिग्री मिल जाती है। जो ओरिजिनल काम करता है वो पीछे रह जाता है। जिसको जिसके पास सिफारिश होती है वो आगे निकल जाता है, जिसके पास सिफारिश नहीं होती वो पीछे रह जाता है। तो यहाँ तो नाइंसाफ़ी की जीत होती है ज़्यादातर। तुम जितना भी कहते रहो कि ये अगर खुदा वाकई इतना इंसाफ करता है तो उसकी एक आम सी मिसाल है, अगर एक इंसान जानबूझकर गलत वजह से एक दूसरे इंसान का कत्ल करे तो उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? उसने एक जान ली है तो क्या होना चाहिए उसके साथ? उसकी भी जान लो। लेकिन अगर एक इंसान 100 लोगों का कत्ल कर दे, मुमकिन है कि नहीं? एक इंसान 100 लोगों का कत्ल करे, क्या सजा दोगे? ज़्यादा से ज़्यादा एक ही दफ़ा कत्ल करोगे ना। एक दफ़ा कत्ल करने के बाद उसके बाद आप क्या कर सकते हो? जाने उसने 100 ली, लेकिन आप तो उसको एक ही दफ़ा सज़ा दे सकते हो ना, तो ये इंसाफ थोड़ी हुआ। तो दो बड़े बड़े जो इश्काल, दो बड़ी शिकायतें आती हैं खुदा के कॉन्सेप्ट के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ। वो एक है कि ये तुम कहते हो कि ये रहमान है, इसमें रहमत कहाँ है? मुझे तो नहीं नज़र आती। और तुम कहते हो कि ये आदल है, ये इंसाफ करता है, मुझे तो इंसाफ नज़र नहीं आता। फिर इसके साथ एक और मसला खड़ा होता है कि अगर कोई भी एक रब को मान ले, एक इलाह को मान ले, जो हर मामले में उसमें कोई कोताही नहीं है, उसके इल्म में किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसकी हिकमत में किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसकी मोहब्बत में किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसके अदल में किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि अगर एक भी कमी किसी भी चीज़ में हो जाए तो वो खुदा नहीं हो सकता। बात वाजे है ना, क्योंकि अगर कमी हुई तो खुदा कैसा हुआ फिर, राइट? फातिहा में इस बात का जवाब है। फातिहा में अल्लाह ताला ने हमारे और अल्लाह के रिश्ते की बुनियाद अर्रहमान रखी, अलादल रखी। पहले अपना नाम बताया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बताया तमाम चीज़ें अल्लाह के बारे में सीखने के लिए पहली चीज़ क्या सीखनी पड़ेगी। पहला यानी पहला वस्फ अल्लाह का, पहली सिफत क्या थी फातिहा में? रब। रब यानी इस तमाम रिश्ते की बुनियाद, मेरी तमाम जिंदगी की बुनियाद, इंसानियत की कहानी की बुनियाद एक लफ्ज़ है मेरे और अल्लाह के दरमियान, वो क्या है? अल्लाह मेरा रब है। अब जब वो अपने आप को अर्रहमान कहता है ना, तो वो रब होने के दायरे के अंदर रहमत कर रहा है। और जब वो दीन मालिक यौमिद्दीन होगा तो वो रब के नाते वो फैसला करेगा उस दिन। यानी इस असल रिश्ता मेरा उसके साथ किस चीज़ का है? मैं अब्द हूँ और वो रब है। अच्छा, इस रब ने क्या किया? उसने एक फैसला किया कि जो मेरी रहमत है ना, वो दो तरह की है, एक जाहिर और एक बातिन। एक रहमत मैं दिखाऊंगा और एक रहमत मैं छुपाए रखूंगा, ये उसका फैसला है। अब क्योंकि वो रब है, उसकी पूरी अथॉरिटी, उसने ये फैसला कर दिया। अब उस फैसले के पीछे उसकी क्या हिकमत थी, क्या तुक थी? अगर वो मुझे सेंस समझा दे कि आपने क्यों किया कि कुछ रहमतें जाहिर हैं और कुछ रहमतें बातिन हैं, آپ کہو کہ کسی کی بیماری ہوئی ہے تو وہ تو عذاب میں ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی چھپی ہوئی کیا ہے؟ رحمت ہے، وہ مجھے نظر نہیں آ رہی. اب مجھے نظر نہیں آ رہی تو میں خدا سے کہوں ذرا مجھے بھی دکھائیں ذرا کیا رحمت تھی اس کے اندر، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. ہاں آپ پہلی بات بھول گئے، کیا ہے وہ آپ کے لیے؟ رب. اور رب کے ہونے کے ناطے اس کو کوئی پریشر نہیں ہے کہ وہ آپ کو سمجھائے کہ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا. دیکھیں اگر جج یا پولیس والا آپ کو روکتا ہے نا تو آپ کو اے کیوں روکا مجھے، پتا نہیں ہے میں کام پہ جا رہا ہوں، سمجھاؤ ذرا کیوں روکا مجھے. آپ کیوں اس طرح بات نہیں کرتے جج کے ساتھ، ٹیچر کے ساتھ، پولیس والے کے ساتھ؟ کیونکہ کیا ہوتا ہے اس کے پاس، اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے تو آپ اس کی اتھارٹی کے اندر سرنڈر ہو جاتے ہو. رائٹ. اللہ تعالیٰ کے پاس ایک اتھارٹی ہے، اس اتھارٹی کے تحت اس نے کہا ہے کچھ رحمتیں تمہیں نظر آئیں گی، سمجھ میں آ جائیں گی، کچھ رحمتیں سمجھ نہیں آئیں گی، لیکن ہے رحمت. پھر بھی سورۃ الکہف میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ تین واقعات جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے ہیں سورۃ الکہف میں، وہاں بھی یہی تو بات کی گئی ہے نا، رحمتا من ربک وما فعلته عن امری. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے ایک رحمت تھی. موسیٰ علیہ السلام کو وہ جب تین واقعات ہوئے ان کو رحمت نظر آئی کہ نہیں؟ وہ تو نظر نہیں آئی. بعد میں سمجھایا کہ یہ کیا تھا، یہ رحمت تھی کس کی طرف سے؟ من ربک. تو یہ رحمت اور رب کا تعلق سمجھ میں جب تک نہیں آئے گا نا، تب تک انسان پوچھتا رہے گا تم تو کہتے ہو الرحمن ہے، مجھے تو رحمت نظر نہیں آ رہی. اصل میں تم رب کو نہیں سمجھے نا، اس لیے تمہیں رحمت نظر نہیں آ رہی. اصل بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ واقعی اس دنیا میں ناانصافی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھے کام کرنے والے لوگ اچھی زندگیاں نہیں گزارتے ہمیشہ، اور یہ اسلام کا دعویٰ بھی نہیں ہے. اسلام قبول کر لو زندگی آسان ہو جائے گی، اسلام کی ہدایات پر چل لو کوئی مشکل نہیں ہوگی تمہاری زندگی میں، صحت مند ہو جاؤ گے، فیملی میں کوئی ڈرامہ نہیں ہوگا، پیسے کا معاملہ حل ہو جائے گا، صحت کا معاملہ حل ہو جائے گا، سوسائٹی کا معاملہ حل ہو جائے گا، ہر طرف سے نعمتیں آئیں گی تمہاری طرف، بس اللہ کی بات مان لو. اچھا جی میں ماننے کو تیار ہوں. کیا مثالیں ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو. ارے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بات مانی، گھر سے نکالے گئے، پھر آگ میں پھینکے گئے، پھر بچے کو ذبح کرنے کا حکم کیا، پھر صحرا میں یہ اچھا بڑا زبردست ریلیجن ہے، اس کو آپ فالو کریں آپ کی ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی. اچھا یعقوب علیہ السلام کی طرح ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اولاد چھین لی گئی، سالوں سال روتے رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی. تو آپ کی کوئی آپ کوئی پروڈکٹ کوئی چیز بیچ رہے ہوتے ہو نا تو آپ بینیفٹس دیتے ہو، یہ آپ یہ لیں تو آپ کا یہی فائدہ ہوگا. اسلام کی اگر آپ سیل کر رہے ہو، کسی کو آپ کنونس کرنا چاہ رہے ہو کہ بھائی آپ اسلام میں آ جائیں، کیوں آؤں، کیا ملے گا مجھے اسلام میں آنے سے؟ اور آپ کو زندگی جو ہے ویسی زبردست ہو جائے گی، آپ سکون آئے گا ساری زندگی میں. اچھا کتاب دکھاؤ، اپنی کتاب کھول کے دیکھے گا جن لوگوں نے اسلام کو فالو کیا ان کی زندگی آسان ہے مشکل ہے؟ مشکل اور پھر اور مشکل اور پھر اور مشکل اور پھر اور مشکل. یہ کیسی سیل ہے؟ اور صحابہ کے بارے میں سوچ لو، جس صحابی نے اسلام قبول کیا ہے اس کی زندگی اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کی فیملی ہے، اس کی اچھی بھلی زندگی ہے، آرام سے زندگی گزر رہی، دوست ہیں، احباب ہیں، سوسائٹی ہے. جیسے ہی وہ مسلمان ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کی فیملی اس کی دشمن، اس کے دوست اس کو چھوڑ گئے، بزنس والے اس کے ساتھ بزنس نہیں کر رہے، بات اس سے کوئی نہیں کر رہا، اسے پاگل کہا جا رہا ہے، اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اس کو سڑکوں میں مارا جا رہا ہے، اس پہ تھوکا جا رہا ہے، صرف ایک فیصلے کی وجہ سے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے. یعنی یہ ایک فیصلہ زندگی کو آسان نہیں بنا رہا، لگتا ہے قرآن کی روح سے کہ جب کوئی یہ فیصلہ واقعی دل سے کر لیتا ہے نا تو اس کی زندگی آسان نہیں ہوتی، اس کی زندگی بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ نتیجہ ہلکے دل والے لوگوں کے لیے نہیں ہے. اگر واقعی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا ایاک نعبد. اور کیونکہ یہ فیصلہ بہت مشکل ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر جو جہاں جہاں سے انسان کو سپورٹ ملتی تھی نا دنیا میں زندگی میں، ہو سکتا ہے وہ سارے راستے بند ہو جائیں. इसीलिए अब कहीं से सपोर्ट नहीं आएगी, तो जिसकी वजह से ये फैसला किया है उसी से सपोर्ट लेनी पड़ेगी। तो अब समझ में आया कि इसके साथ क्या बात जोड़ी हुई है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये दोनों चीज़ें आपस में साथ इसीलिए जुड़ी हुई हैं क्योंकि ये फैसला आसान नहीं है। ये कहना आसान है, ये फैसला आसान नहीं है। अब हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में हम हर नमाज में इसी दावे की तरफ वापस आते हैं जो इस्लाम की बुनियाद है। एक तरह से जो किसी के मुसलमान होने का जो सफ़र है ना, उस सफ़र का खुलासा हम हर फातिहा में हर रकात में पढ़ते हैं। कहाँ से बात शुरू हुई थी, किस नतीजे पर हम पहुँचे, किस लिए हम मुसलमान हुए, इय्याका नअबुदु, और मुसलमान हुए और ये इबादत हमने कबूल की। ये इबादत जब हमने खुद ही अपने तौर पर आकर कबूल की तो फिर हमें इस बात का भी एतराफ़ करना पड़ा कि ये हमारे बस की बात नहीं है, इसमें बहुत सारी मुश्किलात होती हैं और उसमें बस अल्लाह ताला आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, वो इय्याका नस्तईन। ठीक है, तो ये बात, अब इसके बारे में भी कुछ चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं। एक तरफ अल्लाह ने रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और मैंने कहा था रब ऐसा लफ्ज़ है जिसमें रिश्ता होता है, तो एक तरफ रब, दूसरी तरफ अब्द, दूसरी तरफ अब्द। अब अब्द के लिए यहाँ पर हमने देखा कि फ़ेल का इस्तेमाल हुआ है। पहले भी फ़ेल और इसम के बारे में बात हुई थी, थोड़ी सी दोहरा लेता हूँ ताकि आपका जहन फ्रेश हो जाए। फ़ेल में होता है माजी, हाल और मुस्तकबिल, और इसम में क्या होता है, हमेशगी, दवाम, हमेशा के लिए। अल्लाह ताला ने अपने लिए रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इसम, लेकिन हमारे लिए हमने अब्द का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया इसम, हमने क्या इस्तेमाल किया, फ़ेल। फ़ेल में क्या होता है, या माजी या हाल या मुस्तकबिल, और फ़ेल ऐसी चीज़ है जब आप कर रहे होते हो तो होती है, जब नहीं कर रहे होते तो नहीं होती। जैसे खा रहा हूँ, खा रहा हूँ का मतलब है जब खा रहा हूँ तो हो रहा है, जब नहीं खा रहा तो नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं कहूँ ये खाता पीता है, अब मैंने इसम इस्तेमाल किया ना, अब वो सो भी रहा है तो खाता पीता है, समझ रहे हैं बात। हमने जब अपने लिए फ़ेल इस्तेमाल किया तो हमने एक बात का हमने इतराफ़ किया यहाँ पर, और वो क्या है कि हमारी इबादत में ऊंच नीच होती है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी बिल्कुल ना होने के बराबर, कभी बहुत ज़्यादा। जैसे फ़ेल में भी ऊंच नीच होती है और फ़ेल में हमेशगी नहीं होती। हमारे लिए हमसे हमेशा की इबादत मुमकिन नहीं है। आप सो रहे हो तो इबादत नहीं कर रहे, आप काम कर रहे हो तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से कह दिया हलाल कमा रहे हो तो काम भी कर रहे हो तो इबादत है। अपनी फैमिली के लिए आप ग्रोसरीज करने, दूध और ब्रेड वगैरह लेने जा रहे हो, हलाल रोज़ी से अपनी फैमिली के लिए लेने जा रहे हो, तो वो भी इबादत है। लेकिन उस वक्त आप शौरी तौर पर इबादत नहीं कर रहे, वो तो आप सिर्फ दूध लेने जा रहे थे, ब्रेड लेने जा रहे थे, रोटी ख़रीदने जा रहे थे, राइट। तो यहाँ पर इय्याका नअबुदु में अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बहुत रहम किया है कि हमने ये दावा नहीं किया कि हम हमेशा हर लम्हे आपकी इबादत में होते हैं। ये दावा बहुत बड़ा हो जाता, उस पर हम में से कोई पूरा नहीं उतर सकता था। लेकिन हम आपकी इबादत करते हैं, हम आपकी इबादत कबूल करते हैं और करते हैं, इसमें थोड़ी रूम आ गई, करते भी हैं और कभी कुछ ढीले भी पड़ जाते हैं, फिर करते भी हैं, फिर कभी कोताही भी होती है, फिर करते भी हैं। और इस जो जो वसत है इसके अंदर, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी रहमत है। तो यह है इय्याका नअबुदु में फ़ेल का इस्तेमाल। ओके, हाँ, अगर तुम इबादत करो कहा जाता, वो ये बात तो मैंने पहले कह दी थी, अगर कहा जाता करो इबादत तो यह हमारा फ़ैसला ना होता, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता। और यहाँ बात हुक्म की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है आपकी अपनी कमिटमेंट की। अब यहाँ हम खालिसतन तेरे बंदे हैं, अगर ये कहा होता, यानी अगर कहा होता नहनु इबादल्लका खासा, हम तेरे बंदे हैं खास, सिर्फ नहनु इबादल्लका खासा, तो ये दावा बहुत बड़ा हो जाता, क्योंकि इसका मतलब है मेरी जबान से कभी कोई ऐसा लफ्ज ना निकलता जो आपकी इबादत के साए में ना हो, मेरे कदम कभी किसी तरफ ना चलते जो आपकी इबादत के तहत ना हो, मेरे हाथों से कभी कुछ ना होता, मेरी आंखों से कभी कुछ ना होता जो इबादत का तकाजा ना पूरा कर रहे हो, क्योंकि मैं हर लम्हे क्या हूँ, अब्द हूँ। ये तो मेरे लिए मुमकिन है नहीं, ये तो मुमकिन नहीं है। तो इय्याका नअबुदु, अच्छा, अब इय्याका नस्तईन की तरफ।
1: Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan.
0: Islam in baki mazahib se mukhtalif hai. Islam ne pehli cheez madad mangne ko nahi rakha. Islam ne pehli cheez kya rakhi hai? Ibadat. Iyyaka na'budu pehle hai. Aur ye koi chhota fark nahi, ye bahut azim fark hai.
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
2: Inspire 105.1 FM.
4: Assalamu alaikum, my name is Dawood Masood.
5: This is Atiq, no comment, Malik.
6: Fahad Latin.
7: Sufyan Siddiq, my car. Keep listening to Inspire FM.
8: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
9: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
10: Awake, awake, you're walking in the night. A candle you have seen, a candle's not the light. See how the stick is melting, look, the wick is bare. The light has gone, it's vanished in the air. The wax, a formless lump, is lying in its bed. How could you love a thing that now is simply dead? But look again, you simpleton, raise your eyes. The light has never gone, it's risen to the skies. Those eyes you looked within, those lips you longed to kiss, were only shadows of a greater bliss.
11: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk or like Gao Express on Facebook.
12: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है. कोर्ट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे. कोर्ट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk.
13: Juggling too much, trying to keep it all together without losing your mind, you deserve some me time. Join me, Neelam, on Mother's Planet every Friday at 10 o'clock on air at 105.1 FM or via our Inspire FM Facebook page. I'll be sharing tips and discussions with my guests on topics from kids, what to cook, health, well-being and lots more for all you special mums. That's Mother's Planet every Friday from 10 a.m. only at Inspire FM 105.1 FM.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
1: Last time on Akhri Mujza.
0: Nahnu ibadu laka khasa. To ye dawa bahut bada ho jata. Kyunki iska matlab hai meri zuban se kabhi koi aisa lafz na nikalta jo aapki ibadat ke saaye mein na ho. Mere kadam kabhi kisi taraf na chalte jo aapki ibadat ke tahat na ho. मेरे हाथों से कभी कुछ ना होता, मेरी आंखों से कभी कुछ ना होता जो इबादत का तकाजा ना पूरा कर रहे हो, क्योंकि मैं हर लम्हे क्या हूं, अब्द हूं, ये तो मेरे लिए मुमकिन है नहीं।